0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: जिससे डरते थे वही बात हो गई. जब मैं अपने देन बॉयफ्रेंड का नाम अपने रिस्ट पर टैटू करा रही थी, थैंकफुली नॉट हिज पूरा नाम, जस्ट उसके नाम का इनिशियल, कितने लोगों ने इंक्लूडिंग माय ओन ब्रदर सेड, ना कर बेटा पछताएगी. दो साल तक मैं नहीं पछताई, लेकिन जब मेरा बहुत हो गया एंड आई डिसाइडेड टू वॉक आउट ऑफ द रिलेशनशिप, आई वॉज लेफ्ट विद दैट इनिशियल का टैटू ऑन माई रिस्ट, मेरे राइट हैंड की रिस्ट, और उसे कवर अप करने के लिए मुझे उससे बड़ा टैटू कराना पड़ा, विच वॉज अ हार्ट शेप टैटू. इट्स क्यूट एंड ऑल, बट आई वॉज लाइक, ये सोच रोसी, अगर पूरा नाम टैटू करा लेती, या अगर पूरा नाम इंक्लूडिंग हिज सरनेम टैटू करा लेती, तब तो आम काटनी पड़ती ना टू गेट रिड ऑफ द टैटू. तो मुझसे ये एडवाइस ले लो कि किसी के नाम का टैटू मत कराना. नो मैटर हाउ मच यू लव देम, यू नेवर नो व्हेन इट्स गोइंग टू एंड. दो आई विश आपका रिलेशनशिप कभी एंड ना करे, लेकिन अगर हो गया है, व्हाई डोंट यू हिट मी अप एंड वी विल टॉक अबाउट इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड माय डार्लिंग, हिट मी अप ऑन योर सोशल्स, एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi.
1: Isca bana, usca bana, saca bana.
2: Rabana.
1: Burga, burga. La virtua la burga.
2: Mirchi, burga.
3: Hello.
4: Hi, ye call... बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है। हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
5: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
3: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
5: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
3: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
5: हाँ जी,
3: हाँ बोलिए।
5: 33501।
3: अच्छा
5: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए, जरा इनको, ये फोन लाइन पे है, एटीएम वाला।
3: हेलो,
5: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
6: हाय।
5: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
6: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना,
5: हाँ?
6: धोबी से पूछ लीजिए, क्योंकि उसके पास भी है।
5: धोबी से
6: पूछ लीजिए।
5: अच्छा, ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
3: हेलो
5: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
7: ये बेल जा रही है।
5: हेलो भैया। हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
3: अरे भाई तू एक बात सुन, ये
5: आपके
3: हो
5: पास
3: क्या है?
5: आपके पास पासवर्ड होगा?
3: 33501।
5: हाँ सर, 33501।
3: हेलो,
5: हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
3: किस चीज से पूछे जा रहे हैं?
5: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
3: भाई ये क्या कंफर्म? भाई मेरा एटीएम कार्ड है
5: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
3: मुझे बताना है सबको, थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह थोड़ी ना
5: है। आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते।
7: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
3: किसने दिया मेरा नंबर?
7: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
3: अरे मैं कुकड़ुकू।
8: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पगला।
9: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं, सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2। Inefficient,
10: very complex,
11: clumsy or
10: confusion ही confusion.
9: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं। टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ, अपने business के लिए Zoho One ले आओ। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं। Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
12: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
12: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
12: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन। Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
9: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
13: तेरा क्या होगा कालिया?
14: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
13: अब मिर्ची खा।
15: Radio Mirchi, it's hot.
16: रंग रेजा।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: अपनी गर्लफ्रेंड को झूठ बोलने के बाद दैट यू आर अ प्योर वेजिटेरियन, घर जाके जो मीट एंड चिकन पारते हो आप, उसे पता चल गया तो क्या होगा जीवन में, सोचाएगा भी?
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: बट सोचते ही तो नहीं हो आप, और अगर ना सोचते सोचते या एक्स्ट्रा सोचते सोचते यू डन समथिंग नॉटी इन योर लाइफ, नाउ इज द टाइम टू कन्फेस इट. और मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हेलो नॉटी बॉय.
3: हाय रोशी,
1: हाउ आर यू?
3: मैं एकदम बढ़िया हूँ रोशी, आप बताओ?
1: आप एक्चुअली बढ़िया से ज्यादा बढ़िया हो, क्योंकि आपने जब मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी कन्फेशन बताई थी ना, इट मेड मी रीथिंक ऑल ऑफ माय डेटिंग ऐप के बंदे जिन्हें मैंने राइट स्वाइप किया है. आपको ये चीप हरकतें करते हुए शर्म नहीं आई?
3: थोड़ी सी आई थी
1: और उसके बाद भूल गया. आई वाज लाइक इट डजंट मैटर, इतनी सी शर्म काउंट भी नहीं करती है. बट ओके, आपका ये मोडस ऑपरेंडी जो आपने मुझे इंस्टाग्राम पे समझाया था, जरा मुझे फोन पे समझाना.
3: तो होता क्या है, मैंने डेटिंग ऐप से स्टार्ट किया डेट करना.
1: हाँ.
3: तो मैं वहाँ पे ऐसी गर्ल्स, ऐसी लड़कियों को ढूंढता था जो फेमिनिस्ट हो.
1: हाँ.
3: मतलब मैं चाहता था हम डेटिंग पे जाएं, अच्छे रेस्टोरेंट में और सारी चीजें करें, बट खर्चा नहीं करना चाहता था मैं, अपने पैसे थोड़े बचाना चाहता था.
1: तो इससे फेमिनिस्ट तो, लड़कियों का क्या लेना देना है?
3: इससे ये लेना देना है कि जब मैं उनके साथ जाता था अच्छे रेस्टोरेंट में, और मैं हम बात ये करते थे कि हाफ हम मैं पे करता हूँ.
1: हाँ.
3: हाफ आप पे करो.
1: right.
3: तो वो कहती थी कि तुम क्यों पे करोगे?
1: हाँ.
3: सारे पे मतलब सारा बिल, पूरा बिल मैं देती हूँ.
1: One second. So आप एक अमीर फेमिनिस्ट ढूंढते थे जिसे मजे आते थे सारा बिल उसे देने में.
3: राइट राइट राइट. फिर एक दो बार तो चलता था, बट आफ्टर टू और थ्री डेज हम जाया करते थे.
1: हाँ.
3: तो फिर वो रेडी हो जाती थी कि हाँ हाफ आप पे कर दो. और फिर मेरा खर्चा होने लगता था, तो मैं क्या करता था, उनको लेफ्ट स्वाइप करके आगे बढ़ जाता था और कोई नई लड़की ढूंढता था ये कहानी दोबारा रिपीट करने के लिए.
1: ये आप कितनी बार कर चुके हो?
3: आई थिंक 7 or 8 टाइम्स.
1: आपको 7 or 8 बार ऐसी फेमिनिस्ट लड़कियां मिली हैं जिन्हें एक्चुअली पहली दो डेट्स में पूरा बिल देने में कोई शर्म नहीं आती थी?
3: नहीं.
1: उन्हें नहीं लगता था कि ये बंदा कितना बड़ा लाइक ग्राउच है, स्क्रूज है? हाँ. और आप उन्हें एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट लेके जाते थे या आपका समोसे छोले में हो जाता था?
3: नहीं नहीं, एक्सपेंसिव. जब इतनी मेहनत कर रहे हो तो फिर एक्सपेंसिव ही बनता है.
1: आपने मटन रान खाया है ना दूसरी लड़कियों के पैसे में? हंस रहा है भाई तू? मैं सोच रही हूँ कि रोशिफाय करना भी है कि नहीं, बट ठीक है, बिकॉज वी डोंट जज एनीबॉडी. ये लो रोशिफिकेशन.
4: Roshified.
1: और अगर आपने मुझसे 2 मिनट और बात कर ली ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप मुझसे भी पैसे मांग लोगे.
3: आप चलोगे मेरे साथ?
1: ओके बाय, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही मेरे भाईयाद मिस्ट्री कॉलर की तरह कोई भी सीक्रेट कन्फेशन है, देन हिट मी अप. एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
1: Honey, it's 11 p.m. our bedtime. Where are you?
2: I am not going to bed with you ever again.
1: But why? What did I do?
2: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
1: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
2: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
1: Yes, come soon. Honey!
2: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
3: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
4: Oak Tree Road lo best diamond jewelry kosam search chestunnara Krishna Jewelers me exclusive diamond store.
5: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, mariyu stunning pendants. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Esalen.
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: यही तो एक गलती कर रहे हो आप जिंदगी में. नमक सिर्फ खाने में नहीं, आपके पोछे में भी होना चाहिए. इफ यू थिंक आई एम कुकू, थिंक अगेन. क्योंकि ये एक वास्तु और फेंगशुई दोनों का प्रिंसिपल है. अगर जीवन में आपको लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप्स, खास करके आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स, फेल होते जा रहे हैं, इट्स नॉट यू रे. आप तो इंसान बहुत अच्छे हो. प्रॉब्लम ये है कि आपके रिश्तों को नजर लगती है. इज दैट राइट? नेगेटिव एनर्जी आपके रिलेशनशिप्स में पनपती है. और अगर ऐसा हो रहा है देन सिर्फ एक नमक का पोचा विल कॉज योर प्रॉब्लम्स टू गो अवे. क्योंकि नमक एक ऐसी चीज है जो इतनी सस्ती चीज है जो सारी नेगेटिविटी को बैनिश कर देती है. करना कुछ नहीं है, या तो पोचे के पानी में डाल दो, पूरे घर की नेगेटिविटी साफ हो जाएगी, या नहाते समय अपने मग्गे में एक चम्मच भर नमक डाल के उसे अपने ऊपर उड़ेल लो. आई जस्ट सेड उड़ेल लो, एंड उसके बाद सब कुछ स्पष्ट और साफ हो जाएगा. एंड वंस दैट वर्क्स फॉर यू, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB सो दैट यू कैन थैंक मी फॉर इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड, जानू मानू, डू व्हाट यू नीड टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. Hello?
2: Are ye bahut hi khoobsurti ke saath bol diya hai. Hello?
1: Who's this?
2: Are ye bahut hi khoobsurti ke andaaz mein pooch rahe hai mujhse. Who's this?
1: कौन बोल रहा है
2: ये? यार ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
1: क्या मजाक चल रही है?
2: क्या मजाक चल रहा है? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कोवेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ. सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं. सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया. सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतार बन गए.
3: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बढ़े. और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कुकड़ू.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
5: ओह नो,
4: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब. इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स. बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
6: Goalie goes down the ground. Goalie goes out of the ground.
4: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
4: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है. जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: नैनो की खता है, नैनो को पता है. In this case, नैना बेचारी, I don't think she had any idea of what was going to come and hit her. लेकिन अगर आपकी भी जिंदगी में नैना की तरह कोई भी भसड़ है, hit me up on Insta या FP, we will get talking. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. And meanwhile, नैनो की खता वाली, हाय नैना.
2: Hi Roshi.
1: How are you, darling?
2: I'm absolutely fine, and especially after talking to you, like I've got your call and I'm like, oh my god.
1: You have totally made my day. Apna batao ki aapki zindagi mein something is not working out right.
2: It's actually something that main ek relationship mein hu, and it's 3 years old, you know. So okay. We are still continuing it. So mujhe kuch time pehle hi pata chala that my boyfriend literally got drunk, like hell drunk, and he confessed something which actually was shocking to me.
1: Okay.
2: And he told me ki 3 saal pehle when we started, you know, going out and dating each other. So one night he was so drunk and my best friend was there. And somehow they ended up together, you know, spent an entire night together.
1: So ye tab ho raha tha jab aap dono relationship mein the, like you had gotten
2: it. Bilkul naya naya, I think naya naya when he started it. But then he also told me ki it was just a one thing. It happened like out of nowhere. Maine usko bol to diya ki okay, fine. Because मुझे लगा आई डोंट नो कि मैं से क्या याद हूँ. तो आई वॉज टोटली नम बाय द थॉट कि हाउ कैन माई बेस्ट फ्रेंड डू समथिंग लाइक दिस, यू नो, कि एक बेस्ट फ्रेंड कैसे कर सकता है किसी के साथ. और एटलीस्ट अगर उसने नहीं बताया, मेरी बेस्ट फ्रेंड को मुझे बता देना चाहिए था.
1: आई कैन एक्चुअली ऑनेस्टली इमेजिन हाउ यूर फीलिंग, बिकॉज एक तो योर बॉयफ्रेंड इज टेलिंग यू कि एट द स्टार्ट ऑफ द रिलेशनशिप ही काइंड ऑफ चीटेड ऑन यू, दूसरा ही चीटेड ऑन यू विद योर ओन बेस्ट फ्रेंड, ऊपर से बताने वाला आपका बॉयफ्रेंड नॉट योर बेस्ट फ्रेंड, जिसे आप एक्सपेक्ट करते हो शायद शी वुड रीच आउट एंड टेल यू सूनर. सो ऑनेस्टली आपके दो लेवल के दुविधा होने चाहिए ना, कि एक तो कि हाउ डू यू कन्फ्रंटेड विद योर बेस्ट फ्रेंड, दूसरा फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हाउ आर यू फीलिंग अबाउट द फैक्ट दैट योर बॉयफ्रेंड चीटेड ऑन यू, इवन इफ इट वाज एट द स्टार्ट ऑफ द रिलेशनशिप.
2: आई ऑलवेज बिलीव, यू नो, दैट बीइंग समवनस पार्टनर बिफोर यू आर इंडिविजुअल फर्स्ट, यू हैव योर ओन पर्सनालिटी एंड एवरीथिंग. एंड आई थिंक व्हेन यू आर ड्रंक और यू हैव समथिंग मीनिंगलेस, आई डोंट थिंक इट विल मेक एनीथिंग. अब मुझे इस पर ज्यादा कुछ रिएक्ट करना चाहिए, बिकॉज इट हैपेंड. आई फील लाइक दैट आई एम ओके. इज इट ओके टू फील लाइक दिस?
1: एक्चुअली ऑनेस्टली आई थिंक यू हैव अ वेरी सेंसिबल परसेप्शन to this, because agar main aapki jagah hoti, and women ke liye it is actually more integral ki aap emotionally cheat nahi kar rahe ho, and the fact that your boyfriend has not emotionally cheated on you and he came out clean, right? Aapke best friend aur boyfriend ke beech mein your boyfriend told you this. So I feel like if you're feeling like forgiving him, it's only just the right thing to do, kyunki 3 saal baad hi sahi, but he has come out clean, told you what happened, and it was just a one night thing. The other thing that obviously is bothering you is ki ye jo best friend hai, isne jo kiya hai usko kaise deal karna hai. I think you should confront your best friend. Boyfriend ke saath to khair jo ho gaya हो गया, ही वॉज अ बैड पर्सन, अगर फिर से उसने किया तो आप कुछ मत करना, आई विल बी देयर टू फेंड फॉर यू, ठीक है? गर्दन नहीं बचेगी आपके बॉयफ्रेंड की, बोल देना उसको.
2: फॉर क्लियरिंग माय क्लाउड्स,
1: यू आर सो वेलकम. इट वाज सो अमेजिंग टॉकिंग टू यू नैना, ऑल द बेस्ट फ्रॉम द कॉन्फ्रंटेशन.
2: थैंक यू सो मच एंड आई लव योर शो.
1: आई लव यू नैना. और अगर आपकी भी जिंदगी में नैना की तरह कोई भी ऐसे इश्यू है दैट्स ड्राइविंग यू क्रेजी, व्हाई डोंट यू हिट मी अप एंड वी टॉक अबाउट इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, बट कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: इस गाने को गाया है फहीम अब्दुल्ला ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म चांद मेरा दिल से सुनते रहिए चांद मेरा दिल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: It's 9:30 PM. Mirchi Time Check brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry में सिर्फ एक ही नाम, RK Jewels. Best quality, best price.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: मुझे genuinely ये नहीं पता था that car phrases can be so turning on, especially अगर वो जिम के बाहर हो रहे हैं. Before you think I'm talking about something totally chaotic, मैं ऑफिस आई and one of my office colleagues was just randomly standing against the wall और वो car phrases कर रहा था. और आज तक मैंने उसे कभी उस नज़र से नहीं देखा, बट जब मैंने देखा उसे car phrases करते हुए, I was like, यार ये तो काफ़ी हॉट पंदा है. और उसके बाद भाई वो मेरे से ऐसे इंटरमिटेंट फास्टिंग की बातें करने लग गया. एंड देन ही टोल्ड मी कि आई कैन कंसिडर ओमैट विच इज वन मील अ डे. एंड आई वाज लाइक, ये कॉन्वर्सेशन इतनी टर्निंग ऑन कैसे होती जा रही है. एंड देन आई रियलाइज दैट इफ यू आर समबडी हु इज डिवोटेड टू फिटनेस, इस तरह के लोग आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे. एंड इस तरह के लोग जिम जाएं ये जरूरी नहीं है. इनफैक्ट गाइज हु गो टू जिम्स एंड मेक देयर बॉडी, वो मुझे इतने अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं जितने एथलेटिक किस्म के लोग मुझे पसंद है. यू नो, जो ऑफिस में खड़े होकर काफ रेजेस कर रहे होते हैं. अगर आप उन लोगों में से एक इंसान हो जो अपनी फिटनेस के लिए ऑफिस में ऐसे पुशअप्स कर रहा होता है एटसेट्रा एटसेट्रा, इट डजेंट मैटर इफ यू आर फ्लेक्सिंग योर मसल्स, यू आर माई काइंड ऑफ गाय. आई थिंक यू शुड हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड डार्लिंग, डू योर काफ फ्रेजेस एंड हिट मी अप. एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi.
1: Buscaba la, buscaba la, sacaba la. Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Sir, very good evening, man. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
3: हाँ जी बोलिए।
4: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
3: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ। तो हिडन चार्जेस?
5: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
3: कौन बोल रही है?
4: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
3: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
6: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
3: हेलो कौन बोल रहा है?
4: सर रमेश ही बोल रहा हूँ, मैं इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
3: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
5: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
3: हेलो मैडम।
4: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
3: कौन बोल रहा
4: है? रमेश बोल रहा हूँ सर।
3: अभी कोई और बोल रही थी।
4: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
3: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
7: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
3: कौन बोल रहा है?
4: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
3: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
8: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
3: कौन बोल रहा है भैया?
4: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
3: कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
9: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
4: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, आपसे सर फोन मत काटिएगा।
10: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
11: थैंक यू
12: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
13: तेरा क्या होगा कालिया?
14: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
13: अब मिर्ची खा।
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: अपनी गर्लफ्रेंड को झूठ बोलने के बाद दैट यू आर अ प्योर वेजिटेरियन, घर जाके जो मीट एंड चिकन पारते हो आप, उसे पता चल गया तो क्या होगा जीवन में, सोचाएगा भी?
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: बस सोचते ही तो नहीं हो आप, और अगर ना सोचते सोचते या एक्स्ट्रा सोचते सोचते यू डन समथिंग नॉटी इन योर लाइफ, नाउ इज द टाइम टू कन्फेस इट. और मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हेलो नॉटी बॉय.
3: हाय रोशी,
1: हाउ आर यू?
3: मैं एकदम बढ़िया हूँ रोशी, आप बताओ?
1: आप एक्चुअली बढ़िया से ज्यादा बढ़िया हो, क्योंकि आपने जब मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी कन्फेशन बताई थी ना, इट मेड मी रीथिंक ऑल ऑफ माय डेटिंग ऐप के बंदे जिन्हें मैंने राइट स्वाइप किया है. आपको ये चीप हरकतें करते हुए शर्म नहीं आई?
3: थोड़ी सी आई थी
1: और उसके बाद भूल गया. आई वाज लाइक इट डजंट मैटर, इतनी सी शर्म काउंट भी नहीं करती है. बट ओके, आपका ये मोडस ऑपरेंडी जो आपने मुझे इंस्टाग्राम पे समझाया था, जरा मुझे फोन पे समझाना.
3: तो होता क्या है, मैंने डेटिंग ऐप से स्टार्ट किया डेट करना. तो मैं वहाँ पे ऐसी गर्ल्स, ऐसी लड़कियों को ढूंढता था जो फेमिनिस्ट हो. मतलब मैं चाहता था हम डेटिंग पे जाएं, अच्छे रेस्टोरेंट में और सारी चीजें करें, बट खर्चा नहीं करना चाहता था मैं, अपने पैसे थोड़े बचाना चाहता था.
1: तो इससे फेमिनिस्ट लड़कियों का क्या लेना देना है?
3: इससे ये लेना देना है कि जब मैं उनके साथ जाता था अच्छे रेस्टोरेंट में, और मैं हम बात ये करते थे कि हाफ हम मैं पे करता हूँ, हाफ आप पे करो, तो वो कहती थी कि तुम क्यों पे करोगे, सारे पे मतलब सारा बिल, पूरा बिल मैं देती हूँ.
1: वन सेकंड, सो आप एक अमीर फेमिनिस्ट ढूंढते थे जिसे मजे आते थे सारा बिल उसे देने में?
3: राइट राइट राइट. फिर ये एक दो बार तो चलता था, बट आफ्टर टू और थ्री डेज हम जाया करते थे, तो फिर वो रेडी हो जाती थी कि हाँ हाफ आप पे कर दो. और फिर मेरा खर्चा होने लगता था, तो मैं क्या करता था, उनको लेफ्ट स्वाइप करके आगे बढ़ जाता था और कोई नई लड़की ढूंढता था. ये कहानी दोबारा रिपीट करने के लिए.
1: ये आप कितनी बार कर चुके हो?
3: आई थिंक 7 or 8 टाइम.
1: आपको 7 or 8 बार ऐसी फेमिनिस्ट लड़कियां मिली हैं जिन्हें एक्चुअली पहली दो डेट्स में पूरा बिल देने में कोई शर्म नहीं आती थी?
3: नहीं.
1: उन्हें नहीं लगता था कि ये बंदा कितना बड़ा लाइक ग्राउच है, स्क्रूज है, हाँ? और आप उन्हें एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट लेके जाते थे या आपका समोसे छोले में हो जाता था?
3: नहीं नहीं, एक्सपेंसिव, जब इतनी मेहनत कर रहे हो तो फिर एक्सपेंसिव ही बनता है.
1: आपने मटन रान खाया है ना दूसरी लड़कियों के पैसों में? हंस रहा है भाई तू? मैं सोच रही हूँ कि रोशिफाई करना हुई है कि नहीं, बट ठीक है, बिकॉज वी डोंट जज एनीबॉडी. ये लो रोशिफिकेशन.
4: यू've been roshified.
1: और अगर आपने मुझसे 2 मिनट और बात कर ली ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप मुझसे भी पैसे मांग लोगे.
3: आप चलोगे मेरे साथ?
1: ओके बाय, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही मेरे भाईयात मिस्ट्री कॉलर की तरह कोई भी सीक्रेट कन्फेशन है, देन हिट मी अप. एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: Oh God, one more.

0: वाओ।
1: इस अपबीट ट्रैक को गाया है हार्डी संधु और किरण बाजवा ने। म्यूजिक कंपोज किया है तनिष्क बागची, रॉनी अजनाली और गिल मचराई ने। लिरिक्स लिखे हैं रॉनी अजनाली और गिल मचराई ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है का ये सुपरहिट गाना सुनते रहिए ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: जिंदगी में हमें कई बार ऐसा लगता है जब हम एक नया रिलेशनशिप बनाते हैं उसमें किस लेवल तक हम अपनी ट्रू जिंदगी को कन्फेस कर सकते हैं इन अ कपल ऑफ वीक्स या मंथ्स डिपेंडिंग ऑन हाउ क्लोज एंड इंटीमेट योर पार्टनर इज विद यू. अगर आप उनके साथ अपनी जिंदगी के स्पेशली वो पीरियड्स ऑफ योर लाइफ व्हिच हैव बीन डिफिकल्ट फॉर यू वो शेयर करते हो ना देन ऐसी कन्फेशंस कैन एक्चुअली हेल्प यू बॉन्ड बेटर. आई रिमेम्बर मेरे लास्ट रिलेशनशिप में आई डिस्कस माई एक्सट्रीमली चेकर्ड रिलेशनशिप विद माई डैड विद माई देन बॉयफ्रेंड और हमें डेट करते हुए शायद उस वक्त 2 ही महीने हुए थे बट बिकॉज आई शेयर्ड समथिंग सो क्लोज टू माई हार्ट विद हिम ही कुड शेयर विद मी कि उसके और उसकी मम्मी का रिलेशनशिप भी कुछ वैसा ही था जो मेरे डैड और मेरा है एंड दैट गॉट अस सो क्लोज टुगेदर ना दैट जब हम ब्रेकअप कर रहे थे हम एक दूसरे से यही डिस्कशन कर रहे थे कि ऐसी इंटीमेट कॉन्वर्सेशन अबाउट द वूंड्स ऑफ आवर हार्ट हम किसी और से नहीं कर पाए हैं. So maybe having real life confessions with your partner is not such a bad idea because it actually helps you bond better. But जब आप ऐसा कर रहे हो ना, make sure कि आपका partner आपकी सारी insecurities और wounds के बारे में sensitive हो. क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं होगा ना, then there's no point opening up because it might end up actually making your wounds even worse. So use your discretion, use your judgment. और अगर आपको इसमें किसी की मदद की जरूरत है, मैं तो हमेशा ही अपने आप को आपका रोशी कहती हूँ. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. काम है आपसे प्यार करना. नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. तो सोच क्या रहे हो? हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB एंड व्हाइल यू डू दैट लेट मी टेल यू दिस. जिसके पास लव है उसके पास सब है एंड आई लव यू लोड्स.
1: या वांट टू फील दैट कम ऑन गर्ल बी द बीट.

0: 92.7 FM. Radio Mitri, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Ghana Indie Top 10.
2: Kanika ke saath on Mirchi.
3: Mirchi sun rahe hain aap. Bandi ka naam hai RJ Kanika. It's time for the hottest pop music of the week. Hello and welcome. This is the Ghana Indie Top 10. Only show on Mirchi jahan hafte ke top 10 hottest pop gaano ka countdown hum aapke liye lekar aate hain. Connect with me Instagram par jao. Mera handle is @RJKanika. Koi gaana suggest karna hai, koi baatein batani ho, bindaas aake hit me up. हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री है. हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है ऑल दिस एंड मोर. तो सीधा शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की. गाना नंबर 10 पर इस गुरु रंधावा का गाना, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, उन्हीं की आवाज. गाने का नाम है वोग. पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे गिर के वोग इस हफ्ते ऑन गाना नंबर 10. उसके बाद शुभ का नया नवेला गाना मूव्स इस हफ्ते डेब्यू मार के ऑन गाना नंबर 9. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: Number 10. 10, 10, 10.

0: गुरु रंधा की आवाज में एक गाने का नाम है वोग, दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। मैं गुरु रंधावा का गाना सुनती हूँ, सुन के तो मुझे पता है इट्स अ गुरु सॉन्ग, पर अक्सर नाम नहीं याद रहता, बिकॉज मोस्टली गाने मुझे एक जैसे साउंड करते हैं। पर कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कहीं से उसका एक इंस्ट्रूमेंटल या इंट्रो म्यूजिक भी सुन ले तो पूरा गाना याद आ जाता है।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Ghana Indie Top 10. Bindi ka naam hai RJ Kareka. Instagram par jao, mujhe follow karo. Follow karna ekdam free hai. Mujhe pata hai aap phone hi chala rahe the apna. @RJKareka on Instagram par aake quickly say hello. Koi gana share karna ho bindaas aake hit me up. कभी ऐसा होता है ना, दोस्तों के साथ बैठे हैं, रेडियो पे कोई गाना बस शुरू हुआ है, इंट्रो म्यूजिक प्ले हुआ है एंड आपने एकदम बता दिया कि अरे दिस इज दिस सॉन्ग, एकदम फुल ऐसे सुप्रीम फीलिंग आती है दैट आई एम बेटर देन यू ऑल, मैं ज्यादा कल्चरली रिच हूँ, मैं ज्यादा अच्छा म्यूजिक जानती हूँ तुमसे, बहुत सही फीलिंग होती है, शाबाश, पैट ऑन योर बैक। लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं कि जैसे ही वो इंट्रो म्यूजिक बजता है आपको नहीं, गाड़ी में चारों दोस्तों को गाना याद आ जाता है, बिकॉज वो गाना, वो इंट्रो म्यूजिक इतना आइकॉनिक होते हैं। पिछले हफ्ते हमने आपको एक गाने का इंट्रो म्यूजिक सुनाया था, आपको गेस करना था कौन से वाला गाना है। प्लेइंग इट राइट अगेन फॉर यू। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे राइट आंसर्स आएंगे, बिकॉज ये गाना एक साल पुराना भी नहीं है। गाने का नाम है अर्ज किया है बाय अनूप जैन, इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। इस काउंटडाउन पे आगे ये गाना आने वाला है, कौन से नंबर पे उसके लिए वेट करना पड़ेगा। पर जितना पॉपुलर ये गाना हो चुका है उतना ही सिनोनिमस ये इंट्रो पीस हो गया है। @RJKareka ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ाओ, मैं एक और गाने का इंट्रो म्यूजिक आपके लिए प्ले करने वाली हूँ। ध्यान से सुनो और बताओ ये कौन सा गाना है। जल्दी जल्दी आके @RJKareka और इंस्टाग्राम पर मुझे बताओ, मेरे दिमाग में तो गाना, गाने के विजुअल्स, वीडियो सब आ गया है। शो में आगे चल के ये गाना मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अभी काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हैं दिलजीत दोसांझ की आवाज में, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है डीलर, पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडिया टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: नंबर 8।

0: Sana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana.
3: Kya bana?
2: Murga, murga. Nabiyat wala murga.
3: Mirchi, murga.
4: Hello.
5: Hi. Ye call बैंक से है. आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है. हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा. पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं.
6: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज.
4: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
6: एटीएम वाला पासवर्ड है सर. ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
4: हूँ. एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं.
6: हाँ जी,
4: हाँ बोलिए.
6: 33501.
4: अच्छा
6: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ. शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए जरा इनको. ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला.
4: हेलो,
6: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा. हाँ मैं फोन मिलाता हूँ. हेलो डार्लिंग, हाय.
7: हाय.
6: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
7: विक्की का पासवर्ड 33501. एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है.
6: धोबी से
7: पूछ लीजिए.
6: अच्छा ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड.
4: हेलो
6: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर.
8: ये बेल जा रही है.
6: हेलो भैया. हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
4: अरे भाई तू एक बात सुन, ये
6: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501.
4: हेलो.
6: हाँ जी सर. सर यही पासवर्ड है. मेरी बात सुनिए ना.
4: किस चीज से पूछे जा रहे हैं?
6: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर आपके पास.
4: भाई ये क्या कंफर्म? भाई मेरा एटीएम कार्ड है.
6: ये एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
4: मुझे बताना है सबको, थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह थोड़ी ना.
6: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है. कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था. बेकार में एप्लीकेशन डाल दी, टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते.
8: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया. 33501.
4: किसने दिया मेरा नंबर?
8: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था.
4: अरे मैं कुकड़ू को.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जम गया है ये गाना. गाने का नाम है ए अजनबी, आदित्य रिखारी की आवाज अलॉन्ग विद कुटले खां एंड रैविटोर. इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग. ए अजनबी वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उससे पहले संजू राठौड़ का नया नवेला गाना, गाने का नाम है बैंगल्स, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello, hello, स्वागत है आपका. This is Gaana Indie Top 10. बंदी का नाम है RJ Kanika. This is the show जहाँ हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का रिपोर्ट कार्ड हम आपके लिए लेकर आते हैं. Instagram पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika. The show is all about the hottest pop music. लेकिन म्यूजिक की बात पता है क्या होती है, इट मेक्स यू ट्रेवल इन टाइम. कोई भी धुन कभी भी हमको जिंदगी के किसी किस्से में ले जाती है. लाइफ की मेमोरीज की जो बुक लिखी हुई है हमने, उसका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 कभी भी खुल जाता है. अभी रिसेंटली एक वीकेंड पे मेरे साथ ऐसा हुआ. मैं कैफे में थी, थोड़ी कॉफी पी रही थी, आई वॉज एंजॉइंग द वाइब, सेल्फी खींच रही थी, आई वॉज ट्राइंग टू बी इन द मोमेंट, एंड एक गाना चलता है उस कैफे में. वो गाना सुनते ही मैं अपनी लाइफ की मेमोरीज के चैप्टर नंबर 2019 में जा पहुंची. वो गाना मेरे को बिल्कुल ट्रांसपोर्ट करके इसी स्टूडियो में लेकर आया जहां मैंने वो गाना आपके लिए सबसे पहले प्ले किया था.
2: वास्ते जा भी दूं, मैं गवाह मां भी दूं, किस्मतों का लिखा मोड़ दूं.
0: गाने का नाम है वास्ते, ध्वनि भानुशाली, निखिल डिसूजा का गाना. एंड ऑनेस्टली मुझे लगा भी नहीं था कि मुझे एंड टू एंड इस गाने के लिरिक्स याद रहेंगे, बट आई हैड आई कॉन्टैक्ट विद एक दो लोग जो मेरे राइट वाली टेबल, लेफ्ट वाली टेबल पे बैठे थे, एंड वो भी इस गाने के साथ लिप सिंक कर रहे थे. एंड आई रियलाइज दैट सम सॉन्ग्स हैव एन इम्पैक्ट जो आप डिफाइन ही नहीं कर सकते हो. आई रिमेम्बर 2019 में दिस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉप सॉन्ग्स ऑफ द ईयर. इनफैक्ट गाना इंडी टॉप 10 का बेस्ट ऑफ 2019 में वास्ते वॉज नंबर 1 सॉन्ग. इस गाने ने कई सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए. ये पहला ऐसा नॉन फिल्म गाना था जिसने YouTube पे 1 बिलियन व्यूज क्रॉस किए. उसके बाद कई गानों के साथ ऐसा हुआ, बट आई हैव टू रिमाइंड यू दैट इस गाने ने वो इफेक्ट क्रिएट किया जो एक फिल्म का गाना करता है. जहां इट डजेंट मैटर कि ये गाना कौन सी फिल्म पे है, किस पे दर्शाया है, अगर कभी आपने सुना तो मेरे जैसे उस कैफे में बैठे बैठे आप ये गाना गाना शुरू कर देते हैं. तो अपनी रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग, तनिष्क बागची की कॉम्पोजिशन, ध्वनि भानुशाली की आवाज, लेकिन इस गाने के स्टार है निखिल डिसूजा. ट्रस्ट मी, ये गाना मैंने यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम रील्स, हर जगह सुना है, पर कुछ तो बात है, ये गाना रेडियो पे कुछ ज्यादा ही खूबसूरत साउंड करता है. दिस इज वास्ते प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: दूँ।
1: What a song! तनिष्क बागची की कॉम्पोजिशन है, ध्वनि भानुशालिया निखिल डिसूजा की आवाज, अराफत महमूद के लिरिक्स हैं, राधिका राव एंड विनय सप्रू ने ये वीडियो बनाई। Everything about this song is iconic. For the real OG pop culture fans, मैं एक इंडी पॉप क्विज पूछूंगी आपको. It's a difficult one. At RJ Kanega on Instagram पर आओ और मुझे बताओ इस गाने वास्ते में ध्वनि भानुशाली का ब्रेकअप होता है, ठीक है? वो ब्रेकअप कितने बजे होता है मुझे आके at RJ Kanega पर बताओ. मेरे को फुल कॉन्फिडेंस है आपको पता होगा. Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी. The social media sensation, गाने का नाम है शीशा, मिट्टा रॉर की आवाज इनकी कॉम्पोजिशन. मिट्टा रॉर स्वरा वर्मा की आवाज में शीशा इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
2: नंबर 5.

0: Diljit Dosanjh, the man you are, and what a collaboration with Sia. Gaane ka naam hai Ranja. Pichle hafte se ek nahi, do nahi, teen nahi, char bhi nahi bro. Pure 6 positions upar jump karkar, Ranja was this week on Gaana number 4.
1: Gaana Indie Top 10. Gaana Indie Top 10. Gaana ka saath.
0: Mirchi sun rahe hain aap. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. And this show is all about the hottest pop music of the week. वो कहते हैं हर गाना अपना लिस्टनर ढूंढ लेता है, पर पता नहीं कुछ गाने हमको रात को ही ज्यादा अच्छे क्यों साउंड करते हैं. लाइक रियली थिंक अबाउट इट, देयर आर सम सॉन्ग्स जो आपने दिन में 2-3 बजे सुना तो ठीक है, यू विल गिव इट लाइक अ 6/10. वही गाना 2 AM पे हिट्स राइट इन द फील्स, दिल के सारे इमोशंस उमड़ जाते हैं. और ऐसा ही एक गाना मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया है, उसका नाम है जुल्फे बाय साहिल. दो बड़ी टॉर्चेस के साथ इस गाने पर हम एक स्पॉटलाइट मारना चाहते हैं, बिकॉज ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल आर्टिस्ट. साहिल ने अपनी जर्नी बहुत सारे आर्टिस्ट की तरह कवर्स गाकर ही शुरू करी थी, मैशअप्स गाई, वहीं से अपनी ऑडियंस बिल्ड करना शुरू किया. एंड धीरे धीरे जब लोग उन्हें ट्रस्ट करने लगे, उनके म्यूजिक के साथ जुड़ना शुरू करे, उन्होंने अपना ओरिजिनल म्यूजिक अपने फैंस के साथ शेयर किया. एंड फैंस ने कस के प्यार दिया, बहुत ओपन रहे उन एक्सपेरिमेंट्स के लिए, एंड दे केप्ट आस्किंग फॉर मोर न्यू सॉन्ग्स. उन्हीं में से एक गाना है जुल्फे. इट्स अ प्रॉपर लेट नाइट कन्फेशनल सॉन्ग, ऐसा मोमेंट जब आप किसी को कॉल नहीं करते हैं लेकिन उनके बारे में सोचना बंद भी नहीं कर पाते हैं. रियलिटी इमेजिनेशन के बीच का जो स्पेस है, जिसको मे बी आप ओवर थिंकिंग कहते हैं, बट उसका भी अपना मजा है. इट्स क्वाइट R&B सॉन्ग, वेरी इंटीमेट, वल्नरेबल है, दैट्स साहिल की स्पेशलिटी. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. आज की हमारी गाना स्पॉटलाइट में दिस इज जुल्फे बाय साहिल, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इन द टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

साहिल की आवाज में दैट वॉज जुल्फे फॉर ऑल द लेट नाइट थिंकर्स. अगर आप थोड़ा ओवर थिंक करते हैं ये गाने को बैकग्राउंड में लगाकर करना एटलीस्ट बेटर रहेगा. एट आरजे कनिक ऑन इंस्टाग्राम पर आके मेरे साथ अपनी 2 AM वाली प्लेलिस्ट शेयर करो. आई माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन. अगले वाला गाना इज मेरा आपका सबका 2 AM 2 PM 3 PM 5 PM सॉन्ग. ये गाना 15 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार है अनूप जैन की आवाज में. गाने का नाम है अर्ज किया है. इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग. पिछले हफ्ते से एक पोजिशन नीचे ड्रॉप होके अर्ज किया है इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इन द टॉप 10. बंदी का नाम है Kanika. Enjoy. Number 3.

0: गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सबको ये गाना बहुत पसंद है। 23 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप किया है करण औजला इक्की का बॉयफ्रेंड दिस वीक ऑन गाना नंबर 2।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: You are listening to Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show which is all about the hottest pop music of the week. गाना नंबर 10 से गाना नंबर 2 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। बिफोर वी मूव ऑन टू द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज एंड द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज गाने का नाम है तू बाय द वन एंड ओनली सोनू निगम। सोनू निगम का नाम ही काफी है, ही इज अ फुल रेंज म्यूजिशियन। जितने पॉपुलर सोनू निगम एज अ हिंदी प्लेबैक सिंगर हैं, उतने ही पॉपुलर वो एज अ पॉप स्टार भी हैं। नाउ थिंक अबाउट इट, इंडिया में पॉप स्टार्स कब बने? मतलब गाने बहुत बड़े हो जाते थे, पर उन गानों को हम वो गाना किस मूवी में आया है या उस गाने में कौन सा एक्टर एक्ट्रेस है उससे याद रखते थे। देन केम अ वेव ऑफ आर्टिस्ट अर्ली 90s, लेट 90s में ये पॉप स्टार्स जैसे कि सोनू निगम, शान, लकी अली, जिन्होंने इंडियन इंडी पॉप म्यूजिक को आगे बढ़ाया, जिनके गानों की म्यूजिक वीडियो में कोई बड़ी फिल्मों के हीरो नहीं बल्कि आर्टिस्ट खुद फीचर होते थे। एंड सोनू निगम वॉज द पोस्टर बॉय ऑफ दैट चेंज। अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाना शुरू किया उन्होंने। ऑल्दो वो बहुत बड़ी फिल्मों के लिए ऑलरेडी प्लेबैक सिंगिंग कर रहे थे, बट उन्होंने इंडिपेंडेंट पॉप म्यूजिक को भी उतना ही स्पेस एंड अटेंशन दी। एंड उस फेस का ये सबसे मस्ती भरा गाना है। The song is young, very peppy, एक flirtatious energy है, and किसी movie का scene बनने की जरूरत नहीं थी, because in its own इस गाने ने अपनी एक cinematic दुनिया

बनाई। इस गाने में सोनू निगम के साथ बिपाशा बासु इज द फीचरिंग एक्टर। इट वॉज अ यूथ फेवरेट बैक देन, इट इज टिल नाउ। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा दीजिए सोनू निगम की आवाज में द फॉरएवर आइकॉनिक। गाने का नाम है तू, इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन अल्कासेट क्लासिक दिस वीक। बंदी का नाम है कनका, एंजॉय।

0: यार ये गाना सुनते हुए लगता है कि टोपी पहनूं और उस टोपी को उल्टा कर दूं. समथिंग अबाउट दिस सॉन्ग विच जस्ट सर्व्स स्वैग. सोनू निगम की आवाज में दैट वॉज तू ऑन आवर कैसेट क्लासिक दिस वीक. एल्बम का नाम है किस्मत, म्यूजिक है बिडू का.
1: मिर्ची फ्रेश माल.
2: ड्रीमी वाइब और रोमांटिक फील के साथ सुनो शांत मेरा दिल.

0: इस गाने को गाया है फहीम अब्दुल्ला ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म चांद मेरा दिल से सुनते रहिए चांद मेरा दिल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

बस यही तो करते हैं हम यहाँ पर, एक याद आती है और हम साथ साथ पूरी की पूरी बारात निकाल देते हैं यादों की। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। पुरानी यादें, पुरानी बातें, पुराने फिल्में, पुराने गाने, और एक्चुअली पुराना कहाँ होता है, जब भी इनका जिक्र होता है कोई बात होती है तो कोई ना कोई ऐसी याद है जो ताज़ा हो जाती है। जैसे कयामत से कयामत तक फिल्म के बारे में आपको सबसे पहले कैसे पता चला था, सबकी अपनी अलग अलग एक याद होगी, है ना, जो उस टाइम पे टीनेजर्स रहे होंगे या यंगस्टर्स रहे होंगे या रिलेशनशिप में होंगे उनके लिए फिल्म अलग मायने रखती होगी। हो सकता किसी ने अपने पार्टनर के साथ ही जाके फिल्म थिएटर में देखी हो, किसी ने फैमिली के साथ देखी हो, या मेरे जैसे कभी बाद में VCR पे वीडियो कैसेट में देखी हो। हो सकता है किसी ने आमिर खान को सबसे पहले रंग दे बसंती में देखा हो, फिर उसको पता चला हो कि कयामत से कयामत तक उसकी पहली फिल्म थी, या थ्री इडियट्स में उनको पहले देखा हो और बाद में QSQT कयामत से कयामत तक के बारे में पता चला हो। सो पुरानी यादें पुरानी होती नहीं है, हमेशा नई रहती हैं हमारे दिल में। ये गाना सुन लेते हैं, ब्यूटीफुल सॉन्ग पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन मिर्ची
1: सर। वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
2: हाँ जी बोलिए।
1: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
2: आप मुझे पैसे दोगे? हिडन चार्जेस?
3: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
2: कौन बोल रही है?
1: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
2: स्कीम मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही?
4: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
2: हेलो कौन बोल रहा है?
1: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
2: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
3: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
2: हेलो मैडम।
1: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
2: कौन बोल रहा
1: है? रमेश बोल रहा हूँ सर। से
2: अभी कोई और बोल रही थी।
1: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
2: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
5: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
2: कौन बोल रहा है?
1: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
2: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
6: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
2: कौन बोल रहा है भैया?
1: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
2: कभी किसी की आवाज आ रही है, कभी किसी की आवाज आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
7: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
1: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या
2: कोई बोल रहा
1: है? कौन बोल रहा है यार? मैं बोल रहा
2: हूँ
1: आपसे, रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, आपसे सर फोन मत काटिएगा।
8: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
9: थैंक यू
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
10: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
11: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
10: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
12: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
10: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
0: एक ही होता है।
10: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

आपको शायद पता हो या शायद ना भी पता हो कि लेट 80s में दूरदर्शन पे एक बहुत ही अमेजिंग सटायर शो आता था, द फ्लॉप शो बाय जसपाल भट्टी। जसपाल भट्टी उसके मेकर थे, उसमें वो एक्ट भी करते थे, क्या अमेजिंग थे वो। तो उसमें सोसाइटी, कल्चर, सिस्टम में जितने फ्लॉज है ना, उनको कॉमेडी के जरिए दिखाया जाता था। और हर एपिसोड के एंड में एक पैरोडी होती थी उसी टॉपिक से जुड़ी हुई। तो एक बार एक एपिसोड में उन्होंने एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉज दिखाए थे, जिसमें जसपाल भट्टी खुद एक PhD गाइड होते हैं, उनका एक स्टूडेंट होता है जो केमिस्ट्री में PhD कर रहा होता है। और उसके एंड में जो पैरोडी थी ना, वो होती है कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, बीकर को अगर जार कहो जार कहेंगे, करवाते नगर चोरी ये थीसिस तुम कहीं से, पूरी न होती डिग्री रह जाते न कहीं के, हम डिग्रियों को आपकी सौगात कहेंगे, बीकर को अगर जार कहो जार कहेंगे। इसके एपिसोड्स, इसकी ये पैरोडी सब YouTube पे अवेलेबल है। फिलहाल हम ये गाना सुनेंगे सफर फिल्म का, ओरिजिनल वाला मतलब पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
0: Purani Jeans with Charu. Only on.

0: कुछ दिन पहले ना मैं एक फिल्म देख रही थी, 50s की कोई फिल्म होगी, उसमें वाराणसी को काशी कहकर मेंशन किया गया। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और अचानक से मेरे कान खड़े हो गए क्योंकि पुराना नाम है ना, आजकल इतना इस्तेमाल नहीं होता है, हम वाराणसी या बनारस बोलते हैं। फिर मैंने काशी का मतलब गूगल किया तो मुझे पता चला कि ये संस्कृत के एक शब्द काश से बना है, जिसका मतलब होता है चमकदार या प्रकाशमय होना। तो काशी मतलब सिटी ऑफ लाइट्स। एक पुराना गाना भी था जिसमें काशी का मेंशन था, 1954 की नागिन फिल्म का गाना, काशी देखी मथुरा देखी, देखे तीर्थ सारे, कहीं नमन का मीत मिला तो आया तेरे द्वारे, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, ना मांगे ये सोना चांदी, मांगे दर्शन देवी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी। ये गाना हेमंत कुमार जी और लता मंगेशकर जी ने गाया था, हेमंत दा का ही कॉम्पोजिशन था, राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा था। खैर यहाँ पे हम एक और गाना सुनेंगे अब, जिसमें वाराणसी को बनारस कहा गया है। समझ गए ना आप कौन सा गाना है? सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए, आहा। अरे

पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों, ओनली ऑन।

ये क्लासिक गाना 1972 की फिल्म रामपुर का लक्ष्मण से। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये गाना पिक्चराइज्ड है रेखा एंड रणधीर कपूर पे। वैसे इस फिल्म में रेखा का नाम रेखा ही होता है और रणधीर कपूर का नाम लक्ष्मण, जो रामपुर के वासी होते हैं और गांव से शहर

आ जाते हैं और बड़े मजे होते हैं। फिर क्यूट सा इनका गेटअप जो है उसमें दिखाया गया है, धोती कुर्ता पहनते हैं, साथ में अपनी पोटली लिए फिरते हैं, लोटा लिए फिरते हैं और एक संदूक लिए फिरते हैं, बक्सा जिस पर लिखा रहता है नमस्ते जय राम जी की। वैसे आपको पता है रेखा ने एक बार एक इंटरव्यू में शेयर किया था कि रणधीर कपूर उनके फेवरेट को स्टार थे। उस दौरान उन्होंने काफी फिल्मों में साथ में काम किया था, अर्ली 70s से मिड 70s तक। चलिए फिलहाल 80s में आते हैं, 80s का ही ये ब्यूटीफुल क्लासिक गाना सुनते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

1972 की फिल्म जवानी दीवानी कादिर खान साहब की एज डायलॉग राइटर पहली फिल्म थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। तो फिल्म के डायरेक्टर नरेंद्र बेदी ने कादिर खान साहब का लिखा एक प्ले देखा था और तब से वो उनकी राइटिंग के फैन हो गए थे। तो उन्होंने कादिर खान साहब को अप्रोच किया फिल्म के डायलॉग लिखने के लिए। जवानी दीवानी से पहले भी एक फिल्म के लिए अप्रोच किया था, लेकिन तब कादिर खान साहब ने मना कर दिया क्योंकि वो एज सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर अपने काम से काफी खुश थे और फिल्मों में नहीं जाना चाहते थे। लेकिन जब उनको बार बार ऑफर्स आने लग गए तब उन्होंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया और बेदी साहब की बात मान के जवानी दीवानी के डायलॉग्स लिख दिए। चलिए फिलहाल तो इस फिल्म का गाना सुनते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. Na vjet bala burka.
1: Mirci, burka. Hello?
2: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज दिस
1: कौन बोल रहा है
2: ये और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये
1: क्या मजाक चल रही है
2: क्या मजाक चल रहा है सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कोवेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ सर क्या हाल चाल है आपके सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं सर कैसे हैं आप खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए
3: मिर्ची मुर्गा मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बढ़े और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट इट्स पटा
5: तेरा क्या होगा कालिया
6: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार
5: अब मिर्ची खा
4: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
7: पुरानी जींस विद चारू ओनली

एक बहुत ही अमेजिंग क्लासिकल सिंगर रही हैं, जिन्हें पद्मश्री पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है, बेगम परवीन सुल्ताना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर गजल्स, ठुमरियां और कई गीत गाए हैं। फिल्मों में गाने बहुत ज्यादा नहीं गाए हैं, असमीज फिल्मों में गाए हैं, हिंदी फिल्मों में भी गाए हैं, जिनमें से ये गाना उफ इतना पसंद है मुझे। हालांकि इसका एक दूसरा वर्जन जो किशोर दा ने गाया है वो ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन इस गाने की जो गहराई है ना, मैं बयान नहीं कर सकती। इसके लिए परवीन सुल्ताना जी को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था उस साल। वैसे अवार्ड शायद उनके लिए इतने मायने नहीं रखते हैं, इस तरह के जो सिंगर्स होते हैं वो सिर्फ अपनी कला के लिए जीते हैं, वही उनका रिवॉर्ड होता है और वो उनकी गायकी से भी पता चलता है। तो कुदरत फिल्म का ये ब्यूटीफुल सॉन्ग संग बाय बेगम परवीन सुल्ताना जी सुनते हैं, रिटन बाय मजरू साहब, कंपोज्ड बाय पंचमदा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: होगा कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
4: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

आपको पता है जब सनी देओल की पहली फिल्म बेताब की शूटिंग हो रही थी तो उसपे क्या होता था? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। तो फिल्म तो देखो फिल्म कैमरा से शूट होती थी, लेकिन उसी के साथ साथ वो जो एक होम वीडियो वाला कैमरा होता है ना, वो भी रखा जाता था ताकि शाम को सारा देओल परिवार बैठ के VCR पे वो रिकॉर्डिंग देखे कि जी हमारा पुत्र सनी देखो जी कितनी बढ़िया सुंदर एक्टिंग कर रहा है, सदके बारी जाए हम। या मे बी नो फीडबैक के लिए भी देखें कैसा कर रहा है, इससे बेटर कर सकता है। इसी बात पे बेताब फिल्म का गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @RJ.Charu, RJ.CHARU इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुराने जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
3: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

हम बॉलीवुड की अर्ली साइफाई मूवीज के बारे में सोचें तो जहन में मिस्टर इंडिया आती है 1987 की। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन आपको पता है 1964 में भी एक साइफाई रोमांटिक कॉमेडी टाइप की फिल्म बनी थी, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। इसमें किशोर कुमार थे। अब किशोर कुमार के पास उसमें क्या सुपर पावर होती है, आपने फिल्म देखी है तो आपको पता होगा। नहीं देखी तो मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहती, पर आप ये फिल्म देख सकते हैं, इंटरेस्टिंग। और इस फिल्म का एक गाना भी बहुत पॉपुलर है जो हम यहाँ पे सुन रहे हैं, रिटन बाय आनंद बख्शी, कंपोज्ड बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गाया है किशोर दा ने। एक्चुअली इस गाने को टूटे फूटे चोट खाए दिल वालों का एंथम डिक्लेयर किया जा सकता है। व्हाट अ सॉन्ग। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: वेश साय तू क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के

कई बार कुछ मूवीज होती हैं जो इतनी खास नहीं होती हैं, लेकिन आपको याद रह जाती हैं कुछ इक्की दुक्की वजह से। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ऐसी एक फिल्म थी 1987 की दिल तुझको दिया, जिसका इक्का कारण था उसका ही गाना जो हम सुनेंगे। एक जो दुख का कारण था वो था अमरीश पुरी साहब का पॉजिटिव रोल। हालांकि इस फिल्म में पहले वो एक गैंगस्टर एक फाइटर होते हैं, लेकिन बाद में वो सुधर जाते हैं और हीरो होता है कुमार गौरव, उसकी हेल्प भी करते हैं। बहुत ही अडोरेबल सा उनका कैरेक्टर है एंड उसमें जो उनका लुक है वो बाल्ड लुक है। आई थिंक ये पहली फिल्म है जिसके लिए अमरीश पुरी साहब ने अपना पूरा सर शेव किया था। आई थिंक किसी और फिल्म के लिए किया था, उसी दौरान इस फिल्म में काम कर रहे थे, ऐसा कुछ सीन था। तो अगर आप कभी ये फिल्म देखेंगे तो अमरीश पुरी साहब को तो जरूर याद रखेंगे। एंड कमिंग टू इस फिल्म का गाना, कंपोज्ड एंड रिटन बाय राजेश रोशन, संग बाय लता मंगेशकर। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Milchi.
1: Iscaba la buscaba la sacaba la. Burga, burga. La viva la burga. Milchi, burga.
2: Hello.
3: Hi. Ye call बैंक से है. आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है. हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा. पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं.
4: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज.
2: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
4: एटीएम वाला पासवर्ड है सर. ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
2: हूँ. एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं.
4: हाँ जी,
2: हाँ बोलिए.
4: 33501.
2: अच्छा
4: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ. शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए जरा इनको. ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला.
2: हेलो,
4: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा. हाँ मैं फोन मिलाता हूँ. हेलो डार्लिंग, हाय.
5: हाय.
4: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
5: विक्की का पासवर्ड 33501. एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है.
4: धोबी से
5: पूछ लीजिए.
4: अच्छा ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड.
2: हेलो
4: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर.
6: ये बेल जा रही है.
4: हेलो भैया. हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
2: अरे भाई तू एक बात सुन, ये
4: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501.
2: हेलो.
4: हाँ जी सर. सर यही पासवर्ड है. मेरी बात सुनिए ना.
2: किस चीज से पूछे जा रहे?
4: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर आपके पास.
2: ये क्या कंफर्म भाई, मेरा एटीएम कार्ड है
4: ये. एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
2: सिर्फ मुझे बताना है, सबको थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह थोड़ी ना.
4: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है. कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था. बेकार में एप्लीकेशन डाल दी, टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते.
6: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है. 33501.
2: किसने दिया मेरा नंबर?
6: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था.
2: अरे मैं खुकड़ू को.
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा. Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
8: Purani jeans with Charu. Only.

1965 की फिल्म खानदान का गाना लता जी का गाया हुआ, कंपोज किया है रवि साहब ने, लिखा है राजेंद्र कृष्ण जी ने। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस फिल्म में बहुत अमेजिंग एक्टर्स हैं, नूतन जी, सुनील दत्त साहब, ओम प्रकाश जी, ललिता पवार जी, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग रोल जो अपना प्ले किया है वो है प्राण साहब ने। इनका नेगेटिव रोल है इसमें, वो ऐसे मतलब गुंडे नहीं बनते हैं कि जिनका अड्डा है वहां पे, बंदूकें बारूद है, उनके गुर्गे हैं, चमचे हैं, ये फैमिली ड्रामा है। तो इसमें ये फॉरेन रिटर्न भतीजे का रोल प्ले करते हैं जो घर में आके कलेश कर देता है खानदान में आके। अभी प्राण साहब एक तो इतने न्यूएंसेस अपनी तरफ से अपने किरदार में डालते थे ना, तो ये इनका जो किरदार है इसको ऐसा दिखाया गया है कि सर्कस के जोकर जैसे कपड़े पहनता है, उसकी ऐसी हिटलर जैसी छोटी सी मुच्छी है, उस पे वे अजीब अजीब से मुंह बनाते हैं प्राण साहब, और जिस तरह से बात करते हैं उन्होंने इस किरदार को इतना इंटरेस्टिंग बना दिया है ना कि मजा आ जाता है। तो वाह वाह। और फिलहाल यहाँ पे ये जो गाना आ गया ये भी वाह वाह है पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

1971 की फिल्म महबूब की मेहंदी का ये ब्यूटीफुल सॉन्ग। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची। और इस फिल्म ने ना 1969 से राजेश खन्ना की हिट फिल्मों की जो मैराथन चल रही थी उस पे सॉर्ट ऑफ स्टॉप लगा दिया था। आराधना फिल्म जो उनकी ब्लॉकबस्टर हुई उसके बाद कुछ 17 फिल्में कंसेक्यूटिव हिट्स थी राजेश खन्ना की 1969-70-71 में। सो 1971 में ये महबूब की मेहंदी फिल्म इतनी नहीं चली और यहाँ से मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ गया। लेकिन ये जो गाना आ रहा है ये गर्मा गर्म तड़कता भड़कता सुपरहिट सॉन्ग पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली

हाँ, बरसात की रात फिल्म की ये आइकॉनिक कव्वाली। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये कव्वाली तो अब धुरंधर फिल्म की भी पहचान बन चुकी है। वैसे आपको पता है ये एक और ओजी कव्वाली से इंस्पायर्ड है जो बहुत पहले के सूफी पोएट अमीर बख्श साबरी ने लिखी थी। न तो बुत कदे की तलब मुझे, न हरम के दर की तलाश है। ये नुसरत फतेह अली खान साहब ने भी परफॉर्म की थी, उससे पहले उनके फादर फतेह अली खान साहब और उनके अंकल मुबारक अली खान साहब ने भी परफॉर्म की थी। और बरसात की रात की कवाली का जो सेकंड पार्ट है भाई, ये 12 मिनट की कवाली है। कुछ 5 मिनट हमने सुन लिए, अब बचे हुए 7 मिनट सुनेंगे। ये इश्क इश्क है इश्क इश्क। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: मैं खत्म तो खेल खत्म।
1: मिर्ची
2: उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ 2 मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे 2 मिनट दे सकते हैं?
3: हाँ जी बोलिए।
4: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
3: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
5: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
3: कौन बोल रही है?
4: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
3: क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
6: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
3: हेलो कौन बोल रहा है?
4: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
3: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
5: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
3: हेलो मैडम।
4: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
3: कौन बोल रहा
4: है? रमेश बोल रहा हूँ सर।
3: अभी कोई और बोल रही थी।
4: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
3: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
7: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
3: कौन बोल रहा है?
4: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
3: 2 दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
8: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
3: कौन बोल रहा है भैया?
4: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
3: कभी किसी की आवाज आ रही है, कभी किसी की आवाज आ रही है। नहीं भैया नहीं चाहिए मुझे।
9: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
4: हम सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या
3: कोई बोल रहा है?
4: कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, आपसे सर फोन मत काटिएगा।
10: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दे जरा हंस के।
11: थैंक यू।
12: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
13: तेरा क्या होगा कालिया?
14: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
13: अब मिर्ची खा।
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
15: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: से है।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो,
4: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो, और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज दिस,
3: कौन बोल रहा है
4: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
3: क्या मजाक चल रही है?
4: क्या मजाक चल रहा है ये? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कोवेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए, इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
5: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बने। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कुकड़ू।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
6: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: तो सुनता है सबकी, करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान, देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

आर के जूल्स। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अपने रोल मॉडल का चुनाव जरूर करें, लेकिन अपनी विजडम को भी हमेशा जागरूक रखें। आइए इस बात को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर श्रेया, हाल ही में न्यू दिल्ली में एक AI का इम्पैक्ट समिट हुआ था, वहाँ हमारे प्रधानमंत्री भी गए थे, और एक बहुत ही कमाल का वहाँ पे दृश्य हुआ जब PM मोदी सबके हाथ उठा के उनसे एक तरह से एक मोमेंट कर रहे थे। तो वहाँ पे स्टेज पे सैम ऑल्टमैन थे जो ChatGPT के CEO हैं, और उनके एक प्रीवियस एम्प्लॉय हुआ करते थे जो ChatGPT में पहले काम करते थे, और अब उनके राइवल बन गए। वो एंथ्रोपिक के CEO हैं, डैरियो एमुडाई नाम है उनका, और उन दोनों ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। तो फोटो में बड़े ऑकवर्ड लग रहे हैं। बाद में सैम ऑल्टमैन को इस बारे में पूछा भी गया था, तो वो कहते हैं कि मेरे लिए ऑकवर्ड था, मुझे समझ में नहीं आया मुझे क्या करना है उस समय। मेरा सवाल कुछ और है। कई बार ये देखा जाता है कि जब आप फियर्स राइवल्स हो जाते हैं एक दूसरे के, एक ही फील्ड में होते हैं, तो आप एक दूसरे से बात भी नहीं करना चाहते। ये क्या सही रोल मॉडल की तरह आप हैं? आप लोगों को, आप इतने बड़े हैं, लोग आपको देख रहे हैं, इज दिस द राइट वे टू बिहेव?
4: एक्चुअली क्या होता है कि हमारा एक है बीइंग और दूसरा है डूइंग। अब कभी भी जब आप राइवलरी की बात कर रहे हैं, तो राइवलरी तो शब्द ही अच्छा नहीं है, बिकॉज आप दो जने कुछ डूइंग में कर रहे हैं
3: जी,
4: और आप अपनी रेस लड़ रहे हैं। यू रनिंग योर ओन रेस, और आप अपनी स्पीड से, अपने प्रिंसिपल से, अपने वैल्यूज से आप वो रेस लड़ रहे हैं। पर कभी कभी क्या होता है, उस डूइंग के प्रोसेस में जिन लोगों के साथ आप होते हैं, उनका कोई बिहेवियर, उनका कोई एक्शन, उनकी कोई कमी, उनके साथ का कोई पास्ट एक्सपीरियंस आपके अंदर बैठ जाता है, आपके एटीट्यूड में बैठ जाता है
3: जी।
4: वो आपके एक्शन से रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। एंड जो देखने वाले लोग हैं, वो जो आप कर रहे हैं उससे ज्यादा देख रहे होते हैं।
3: तो उनको नहीं पता कि इसके पीछे कारण क्या है,
4: पर दिखाई दे जाता है ना। हम रोल मॉडल नहीं भी हैं, तो भी हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो वाइब्रेशन है, हमारी जो एनर्जी है, वो तो हर एक को फील होती है। वो किसी को एम्पावर भी कर सकती है, वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकती है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: आगे बढ़ने के लिए हेल्दी कंपटीशन बहुत जरूरी है, आइए इसे थोड़ा और समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, कभी कभी क्या होता है जब आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो बहुत बड़ा है, आप कुछ महत्वपूर्ण रिसर्च कर रहे हैं, कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो आगे की जेनरेशन के लिए बहुत बड़ा होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो आप ये नहीं चाहते हैं कि आपने जो बनाया है वो आप किसी के साथ शेयर करें। तो राइवलरी कभी इस वजह से भी हो जाती है कि उसी फील्ड में अगर कोई और है तो उससे आप ये सारी चीजें बात नहीं करना चाहते, कि कॉमन प्लेटफॉर्म पे देखे नहीं जाने चाहते, ये क्या सही है या हेल्दी कंपटीशन होना जरूरी है?
4: सी, एक चीज होती है कि कुछ आपके एथिक्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, या आप कह रहे हैं कि अगर आप किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, इट इज अंडरस्टैंडेबल। वो सामने वाला भी समझता है कि कोई भी आप बिजनेस प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके कुछ सीक्रेट्स हैं, आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, आप किसी प्लेटफॉर्म पर बोल नहीं सकते। पर किसी दूसरे के बारे में गलत अपने मन में सोचना, उनकी कमियां अपने मन के अंदर बिठा के रखना और उनके साथ भी उन्हीं चीजों का वर्णन करना, वो रिश्ते को खराब कर रहा है। आप अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। लाइक ऐसे डूइंग को अलग करें, बीइंग को अलग करें। आपके बीइंग के अंदर तो जो उनकी क्वालिटीज है वो आप रख सकते हैं ना, देन क्या होगा, आप बिजनेस में भले राइवल्स होंगे, राइवल्स आई जस्ट डोंट लाइक द वर्ड राइवल्स, बट मे बी आप कंपेटिटर्स हैं, बट रियल लाइफ में आप फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। मतलब उसमें क्या है, यू थिंकिंग गुड अबाउट अनदर पर्सन, रिश्ता मन में बनता है, इन योर माइंड फॉर दैट पर्सन विल क्रिएट दैट रिलेशनशिप। इट इज नथिंग टू डू आप बाहर क्या कर रहे हैं। आप देखें इन फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स आपको लिटरली कई बहुत क्लोज फ्रेंड्स दिखाई देंगे जो एक्चुअली हमेशा दो अलग टीम के अंदर खेल रहे होते हैं, पर वो कहते हैं नहीं, हमें एक दूसरे के प्रति डीप रिस्पेक्ट है, हमने एक दूसरे से हमेशा बहुत सीखा है, वो एक साथ होंगे, एक साथ चल भी कर रहे होंगे, एक साथ, दैट इज पॉसिबल।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मॉर्निंग ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: अगर आप किसी के रोल मॉडल हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। आइए इसे समझते हैं।
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
5: सिस्टर, स्पोर्ट्स में क्या होता है, ज्यादातर आप गेम खेलते हैं तो गेम एक दिन या 5 दिन या जो भी है 90 मिनट 70 मिनट में खत्म हो जाता है और आपको हार जीत का फैसला मिल जाता है। लेकिन आपको ये भी पता है कि भाई ये गेम हारे हैं, अगला गेम जीत सकते हैं। इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, लेकिन बहुत बार उसी दिन पे बहुत महत्वपूर्ण या बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जो इंडस्ट्री है, जो काम कर रहे हैं, वो एक लंबा दौर होता है। एक प्रोडक्ट डेवलप करने में बहुत समय लगता है, बहुत सारी मेहनत जाती है और उस पर बहुत सारी नौकरियां, बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ होता है। तो ऐसे केस में जब आप एक दूसरे से हाथ ही नहीं मिलाते, एक दूसरे से बात नहीं करते, आप किस तरह के रोल मॉडल बन रहे हैं और लोग आपसे क्या सीख रहे हैं?
6: वो तो अभी आपको डिसाइड करना है, क्योंकि देखो लोग देख करके ही तो सीखते हैं ना। That's what I said, आप कुछ कर रहे हैं और आप बहुत सफल भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप कितने हम्बल हैं, आप कितने रिस्पेक्टफुल हैं, आप कितने काइंड और कंपैशनेट हैं, वो चीजें छिप नहीं सकती है। आप बाहर एक्सटर्नल लेवल पर सफल होना एक चीज है, लेकिन रोल मॉडल हम किसको बनाते हैं? रोल मॉडल डिपेंड करता है कि जब मैं भी रोल मॉडल चूज कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स देख रहा हूँ कि मैं उसकी इमोशनल स्ट्रेंथ भी देख रहा हूँ। देयर कैन बी समबडी हु इज वेरी वेरी फाइनेंशियली सक्सेसफुल, नेम भी हो सकता है, फेम भी हो सकता है, मनी भी हो सकता है, ईगो भी बहुत हो सकती
5: है, होता है, ज्यादातर हो जाता है।
6: अभी रोल मॉडल बहुत केयरफुली चूज करना होता है। रोल मॉडल एक्सटर्नली नहीं, दोनों, आप व्यक्ति कैसा है और व्यक्ति की सफलता, दोनों चीजें, व्यक्तित्व कैसा है, एब्सोल्युटली, चरित्र कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, और नॉर्मली आप जो बनना चाहते हैं वैसा। रोल मॉडल चूज करने में बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए, यू शुड बी वेरी वेरी पेशेंट, क्योंकि फिर आप इम्प्रेस होकर उस चीज को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए इन्फ्लुएंसर्स और रोल मॉडल का तो रोल ही ये होता है कि आपका हर कर्म नोटिस हो रहा है। इसलिए आप देखिए बहुत सारी कंट्रीज के अंदर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो फेमस लोग हैं, जो सेलिब्रिटी हैं, उनके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है। सोसाइटी भी डिमांड करती है कि वो जब पब्लिक के सामने होते हैं तो जो उस कंट्री की मोरालिटी है उसको वो फॉलो करे। अगर वो उस मोरालिटी को फॉलो नहीं करते तो हैवी पेनल्टी है, हैवी फाइन्स है, हैवी मीडिया स्क्रूटिनिटी है उनको। कहीं मतलब वही गलती कोई कॉमन मैन करे और वही गलती अगर कोई सेलिब्रिटी करता है तो कई बार आजकल तो कैंसल आउट भी कर देंगे उसको। सो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत ज्यादा।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: क्या हर रोल मॉडल के साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है? आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: सिस्टर, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे होते हैं, रोल मॉडल्स ऐसे होते हैं जिनसे हम बहुत बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं, उनको फॉलो करना चाहते हैं, उनके व्यक्तित्व पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। हमको लगता है ये ऐसा कर रहे हैं तो ये सही होंगे क्योंकि ये इतने बड़े हैं अपने फील्ड में। तो सैम ऑल्टमैन का हैंडशेक नहीं करना डैरियो के साथ, या फिर कई बार स्पोर्ट्स के फील्ड में देखते हैं कि भाई मैच के पहले या मैच के बाद में आपने हैंडशेक नहीं किया। कई बार आप देखते हैं कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कुछ भी बोल जाते हैं एक्सेट्रा। अब आप क्योंकि इतने बड़े मॉडल हैं, लोग इतने फॉलो करते हैं आपको, उस समय आप ये नहीं देखते कि जो वो कार्य कर रहे हैं वो सही है या गलत। आपको लगता है ये कर रहे होंगे तो सही ही होगा। तो मैं आपसे जो पूछना चाहता हूँ कि मैं इम्प्रेशनेबल हूँ, मैं छोटा हूँ बड़ा हूँ जो भी है, लेकिन मैंने उनको रोल मॉडल माना है, मैं ये कैसे तय करूँ क्या सही है क्या गलत है? क्योंकि कभी कभी जो सामने वाला कर रहा है वो मुझे सही लग रहा है।
5: सी, पहली चीज तो ये है कि जो फेमस लोग हैं उनको कई बार लगता है कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। समटाइम्स दे फील हम कोई ब्रांड एंडोर्स कर रहे हैं, लेट्स जस्ट से अ ब्रांड भी है, आपको लगता है कि नहीं मेरा एज एन एक्टर का जो रोल है वो सिर्फ ब्रांड एंडोर्स करना है, ये ब्रांड अच्छा है नहीं अच्छा है,
4: उस पर रिसर्च नहीं करते,
5: उस पर हम रिसर्च नहीं करते, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं
4: जी।
5: आई पर्सनली फील वो सही नहीं है, क्योंकि लोग आपसे प्रभावित हैं, तो हमारी भी कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारा कर्मा होता है ये। क्योंकि मैंने अगर किसी चीज को एंडोर्स किया और मुझे कोई फॉलो करता है तो वो ब्लाइंडली उस चीज को भी फॉलो कर लेगा
4: जी।
5: वो कहता है आप ये करते हैं, हम कहेंगे इसमें हमारी क्या गलती है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर नहीं, इन्फ्लुएंसर का मतलब ही क्या है?
4: वो इन्फ्लुएंस करता है,
5: वो इन्फ्लुएंस करता है। आपके फॉलोअर्स का मतलब ही क्या है? वो आपको
4: फॉलो
5: करते हैं, वो आपको ऊपर फेथ रखते हैं, आपको ट्रस्ट करते हैं। सो दैट इज वन थिंग कि आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसलिए कई लोग अगर आपको मिलेंगे इंडस्ट्री में जो अपने प्रिंसिपल्स के प्रति बहुत फर्म होते हैं कि हम इस चीज को एंडोर्स नहीं करेंगे, हम इस चीज का एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं खाएंगे नहीं पहनेंगे, यू मीट बोथ काइंड ऑफ पीपल।
4: बिल्कुल,
5: आप उनको कितना भी टेम्प्ट करने की कोशिश करें वो चीज नहीं करते। दैट इज वन थिंग कि उनके।
6: यू आर लिसनिंग टू 103.3 FM HD2 WPRP प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी, रेडियो मिर्ची।

0: Fritz Hot.
1: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
2: अपना रोल मॉडल कैसे चूज करें? आइए इस पर थोड़ा गौर करते हैं।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: मेरा सवाल वही था कि मैं कैसे डिसाइड करूं, वो तो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अब मैं हूं, मैं इनको फॉलो कर रहा हूं, मैं क्या करूं?
5: आपका जो है फॉलो करने का, आप क्या चाहते हैं लाइफ में, आप उस तरह से तो अपना रोल मॉडल डिसाइड करेंगे ना, आपको सब मिल जाएंगे। आपको हम्बल से हम्बल व्यक्ति भी मिल जाएगा, इगोइस्टिक भी मिल जाएगा, कंपैशनेट भी मिल जाएगा, रिवेंजफुल भी मिल जाएगा, वायलेंट भी मिल जाएगा, पीसफुल भी मिल जाएगा। अब किसको फॉलो आपको करना है वो तो आपकी चॉइस है ना, वो तो हर कदम पर आपकी चॉइस है, आप क्या बनना चाहते हैं, दैट इज योर इंडिपेंडेंट चॉइस। अब वो चॉइस कई बार कहाँ से आती है, ये फॉलो करने से ज्यादा आप किस प्रकार के इंसान है। मुझे ऐसा लगता है कि घर की जो अपब्रिंगिंग होती है ना, आई वॉज इन अ प्रोग्राम वंस, आई टेल यू, देयर वर 60 लीडर्स उसके अंदर, एंड देयर वर लीडर्स एंड देयर वर ऑल इन द एज ऑफ 48 एंड 60, क्योंकि वो लीडर्स थे, उनके नीचे बहुत लोग काम कर रहे थे। हमारा एक वर्कशॉप सा चल रहा था जिसके अंदर एक सिंपल सा सवाल था कि आपका रोल मॉडल कौन है। देवर वेल रेड पीपल, वेल एडुकेटेड पीपल, वेल ट्रेवल्ड। आई थॉट दे गोइंग टू राइट, कोई ना कोई लीडर का नाम लिखेंगे। उसमें से 58 लोगों ने जो नाम लिखा वो था या मदर या फादर। सो व्हाई एम आई सेइंग दिस, दैट इफ योर मदर एंड फादर आर अ सर्टेन वे, आपका रोल मॉडल भी वैसे ही आप दुनिया में चूज करेंगे। अगर वहां से कंपैशन आ रहा है तो आप वहां कंपैशन ढूंढेंगे, वहां पर ह्यूमिलिटी है तो आप ह्यूमिलिटी को ढूंढेंगे, वहां पर ही अगर उस चीज का बहुत अहंकार या अभिमान है तो आपको वैसा व्यक्ति अट्रैक्ट करेगा। और इसीलिए किसी चीज के नीचे जब आप कमेंट भी पढ़ेंगे ना, आपको दोनों प्रकार के कमेंट मिलेंगे। कोई व्यक्ति क्रिटिसाइज कर रहा है तो लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, अच्छा आपने आवाज उठाई, आवाज उठाना अच्छा है लेकिन रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ होना चाहिए। कोई क्रिटिसाइज कर रहा है पर उसको अच्छा नहीं बोलेगा, नीचे बोलेगा नहीं बट दिस इज नॉट द राइट वे। किसी को डिमीन करना, सबके सामने किसी को रिजेक्ट करना, किसी का मजाक उड़ाना, आई डोंट थिंक इट इज गुड। पर वो सेम काम को एक व्यक्ति अक्नॉलेज करेगा, एक व्यक्ति रिजेक्ट करेगा। दिस डिपेंड ऑन आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप कैसे हैं, आपके संस्कार कैसे हैं।
4: सही बात।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
1: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
2: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
3: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
2: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन.
6: कुछ आवाजें सिर्फ गानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
7: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Providing और nurturing का balance कैसे समझे? आइए इस बात को समझते हैं.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
3: ज्यादातर देखा जाता है कि जो औरतें करियर में बहुत अच्छा करने लग जाती हैं, उनसे कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि आपके बच्चों का ध्यान कौन रखता है, व्हाट सैक्रिफाइसेस डिड यू हैव टू मेक कि आप यहाँ तक पहुंची, आपको क्या ये किया हुआ सही लगता है. तो ऐसा क्यों है कि औरतों से ही ये सवाल पूछा जाता है और मर्दों से नहीं पूछा जाता?
4: वो इसलिए है कि अब हमारे जो वेमेन है उन्होंने काम करना शुरू किया है. पहले समाज में देखो, कोई भी हम जब घर चलाते हैं तो उसमें दो रोल बहुत जरूरी होते हैं. एक होता है नर्चरिंग का और एक होता है प्रोवाइड करने का.
3: जी,
4: तो प्रोवाइडर का जो रोल था
3: वो ज्यादातर मेल की तरफ
4: पहले ऐसा था. अगर आप ये तो अभी अभी हुआ ना, और पहले जो प्रोवाइडिंग का रोल था ना वो भी बड़ा डिफिकल्ट था.
3: क्योंकि जंगल में जाके आपको मांस लेके आना है वगैरह,
4: ऐसा नहीं था. वुमेन को तो और कंफर्टेबल रोल दिया हुआ था हिसाब से. उस समय पर फिजिकल लेबर ज्यादा है, आपको खेतों में जाना है या जो भी करना है, तो जो हार्ड वर्क था, फिजिकल लेबर था, वो मेल कर रहा था और प्रोवाइड कर रहा था फैमिली के लिए. वो एक रोल प्ले कर रहा था. जो फीमेल थी उसने ज्यादातर जो रोल लिया हुआ था घर को संभालना और नर्चर करना.
3: जी बिल्कुल,
4: कोई भी रोल कम ज्यादा नहीं होता है. दोनों रोल एक्चुअली में इम्पोर्टेंट है. हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक रोल को ज्यादा सुपीरियर मान लिया.
3: महत्व ज्यादा पुरुषों को दे दिया.
4: पुरुषों को नहीं दिया, रोल को दिया. आज भी हमें लगता है जो धन कमाता है ना
3: वो ज्यादा इम्पोर्टेंट,
4: वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. हमने रोल को, प्रोवाइडर के रोल को, धन कमाने वाले के रोल को ज्यादा सुपीरियर कर दिया. तो हमें लगा कि अगर हम वो रोल प्ले करेंगे तो शायद समाज हमें भी उतना रिस्पेक्ट देगा, और समाज ने दिया भी.
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया. ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
1: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
2: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: Are you a South Asian parent of a child with special needs looking for help that understands you and your culture? Reach out to SKN Foundation's SCOPE program for their parent support group, educational empowerment programs, IEP consultations, job skills training for teens, and inclusive events year-round.

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: It's 7:30 AM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
3: उदास उल्फत जी लिखते हैं कि मुझे एक प्रॉब्लम है बोलने में। मैं थोड़ा रुक रुक कर बोलता हूँ। जब किसी से बात करनी होती है तो मैं डरता हूँ। इस डर को दूर करना चाहता हूँ, कैसे करूँ?
4: कोई बात नहीं, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ वीकनेस होती है। डर आपको इस बात का है कि लोग क्या कहेंगे।
3: जी,
4: ये एक ऐसा डर होता है कि फिर वो अपनी हमें कमियों को ओवरकम नहीं करने देता है। आप अपने को अगर कहेंगे कि ठीक है, ये मेरे अंदर, मुझे नहीं पता ये कमी है कि ये कोई बीमारी है, जो भी है, इसका जो भी प्रोसेस है, आप उसको ओवरकम करें और इस चीज से परे चले जाएं कि आपको लोगों का वैलिडेशन चाहिए।
3: बिल्कुल भी नहीं,
4: पर यही हमारे अंदर होता है ना। वो क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे, वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। अपने मन को समझा लें कि वो उड़ाते भी तो ठीक है, वैसे तो कोई अच्छा व्यक्ति
3: कभी नहीं उड़ाएगा,
4: नहीं उड़ाता है,
3: बिल्कुल भी नहीं।
4: वो ना किसी का मजाक उड़ाता है, किसी, आई मीन दे डोंट मेक फन ऑफ अदर पीपल। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो ये तो वो अपने संस्कारों का प्रदर्शन कर रहा है, रिफ्लेक्टिंग देयर ओन संस्कार।
3: तो आप बुरा ना माने।
4: हाँ, आप बुरा नहीं माने और अपने को समझाएं कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हर एक के अंदर कोई ना कोई कमी कमजोरी होती है। स्टैमर आप करते हैं या आप धीरे धीरे बोलते हैं, इट इज ओके।
3: एब्सोल्युटली। और उदास, अगर आपको प्रोत्साहन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, तो ऋतिक रोशन के पास सेम डिसेबिलिटी कह सकते हैं, जो भी है प्रॉब्लम थी, और आज देखिए वो कहाँ पर हैं। और बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं मिल चुका हूँ 2-3 बार। बहुत हम्बल, बहुत केयरिंग, बहुत लविंग, बहुत फ्रेंडली हैं, और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी मुकाम पे पहुंच सकते हैं।
4: जीवन में कोई आपको एक्सेप्ट करे ना करे, आपको अपने को एक्सेप्ट करना चाहिए।
3: जी,
4: कोई रिस्पेक्ट करे ना करे, आपको खुद अपने को रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसा व्यवहार हम अपने साथ करेंगे, धीरे धीरे लोग हमारे साथ वैसा व्यवहार करना शुरू।
3: वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। और इस विषय में मैंडी हेल है, उन्होंने लिखा है कि यू ब्यूटीफुल जस्ट द वे यू आर, शाइन ऑन एंड डेयर एनीवन to turn off the lights.
1: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर राज कोलकाता से लिखते हैं, हेलो रिचार्ज मंत्रा टीम, मेरा सवाल है, इस ग्रीड से भरी दुनिया में एक प्योर स्पिरिचुअल और पायस जिंदगी जीने का राज क्या है?
3: समझ। अगर आपको समझ मिल जाती है कि मेरे कर्म से मेरा भाग्य बनता है, तो फिर भले सब भी गलत कर रहे हो, आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो आप करेंगे उससे आपकी डेस्टिनी बनेगी, जो वो करेंगे उससे उनकी डेस्टिनी बनेगी। तो आप किसी के इन्फ्लुएंस में न आकर के

0: क्या है, भगवान क्या कहता है, उस मार्ग पर
1: उस पे
0: चलेंगे।
1: चलेंगे। सही बात है।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hello there, this is your girl Priscilla and yes baby, Mirchi Mornings has officially entered the chat. आज का weather थोड़ा सा confused हो सकता है, traffic थोड़ा सा toxic हो सकता है, लेकिन हमारी vibe एकदम मिर्ची दार है. मेरा नाम है Priscilla और मैं हूँ तुम्हारी morning buddy for next few hours. अभी फिलहाल office जा रहे हो, work from home कर रहे हो, breakfast बना रहे हो या फिर अपने कल रात के decisions के बारे में rethink कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो मेरे साथ बने रहो क्योंकि honestly यहाँ पर होने वाली है ढेर सारी गपशप, ढेर सारी बातें, तुम्हें अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स भी मिलने वाली है यहीं पर एंड साथ साथ में बीच बीच में मिर्चीदार बैंगर्स भी आने वाले हैं. दैट्स योर फेवरेट पार्ट, आई नो. ऑल्सो इफ योर बॉस आस्क्स व्हाई यू आर स्माइलिंग दिस अर्ली, जस्ट से साइड इफेक्ट्स ऑफ लिसनिंग टू मिर्ची मॉर्निंग्स. मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ में फटाफट से मुझे अपने साथ रखो इंस्टा और एक्स पर भी. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची. That's 9033-647-244. फिलहाल फटाफट से मुझे फॉलो करो एंड सुनते जाओ मिर्चीदार बैंगर्स. स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट.

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na pierdba la burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: Hi. Ye call बैंक से है. आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है. हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा. पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं.
3: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज.
1: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
3: एटीएम वाला पासवर्ड है सर. ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
1: हूँ. एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं.
3: हाँ जी,
1: हाँ बोलिए.
3: 33501.
1: अच्छा
3: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ. शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए जरा इनको. ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला.
1: हेलो,
3: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा. मैं फोन मिलाता हूँ. हेलो डार्लिंग, हाय.
4: हाय.
3: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
4: विक्की का पासवर्ड 33501. एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है.
3: धोबी से
4: पूछ लीजिए.
3: अच्छा ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड.
1: हेलो
3: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर.
5: ये बेल जा रही है.
3: हेलो भैया. हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ. आप हमारे कपड़े धोते हो?
1: अरे भाई तो एक बात सुन, ये
3: आपके पास
1: है?
3: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501.
1: हेलो.
3: हाँ जी सर. सर यही पासवर्ड है. मेरी बात सुनिए ना.
1: किससे पूछे जा रहे हैं?
3: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर आपके पास.
1: भाई ये क्या कंफर्म? भाई मेरा एटीएम कार्ड है.
3: ये एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
1: सिर्फ मुझे बताना है, सबको थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह थोड़ी ना आता है.
3: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है. कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था. बेकार में एप्लीकेशन डाल दी. टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते.
5: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है. 33501.
1: किसने दिया मेरा नंबर?
5: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था.
1: अरे मैं कुकड़ू को.
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
10: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
11: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
12: Wow! Yahi to hai mera dream lehenga!
13: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
12: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
13: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
12: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
14: जय गुरुदेव. गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटवे आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे. शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिरजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ. रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ. शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति. 7323578200. जय गुरुदेव.
15: तेरा क्या होगा कालिया?
16: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
15: अब मिर्ची खा.
17: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: की गल करनी है?
1: तेरे मेरे बारे
0: की?
1: बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन की बात और सी।
1: अर 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन से गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड यू आर लिसनिंग टू मिर्ची मॉर्निंग्स। तो सुनो, साइंटिस्ट एट द प्रिंसटन यूनिवर्सिटी हैव क्रिएटेड अ टाइनी ब्रेन पावर्ड कंप्यूटिंग डिवाइस। हाँ जी, टाइनी ब्रेन कंप्यूटर। बेसिकली दे कंबाइंड रियल ह्यूमन ब्रेन सेल्स विद इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इनटू वन फ्यूचरिस्टिक सिस्टम। एंड द क्रेजीएस्ट पार्ट इज दैट दिस लिटिल डिवाइस कैन एक्चुअली लर्न एंड रिकॉग्नाइज पैटर्न्स आफ्टर बीइंग ट्रेन्ड लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। ऑनेस्टली, इफ दिस टेक्नोलॉजी गेट्स टू स्मार्ट, वन डे योर लैपटॉप माइट से आज मैंने काम करना ही नहीं, मैं मेंटली एग्जॉस्टेड हूँ। वैसे अर्ली अटेम्प्ट्स एट दिस टेक्नोलॉजी हैड वन बिग इशू, द ब्रेन cells and electronics weren't properly connected, but now researchers have built it together in a full 3D system. And somewhere हर देसी parent जो है उनके excitement का level और बढ़ गया है। वो कह रहे हैं शामा जी का बेटा जो है अब तो computer बन गया है, तू कुछ मत करना। वैसे jokes about this could seriously change the future of computing, medicine and AI. Imagine machines learning more naturally, almost exactly like humans do. लेकिन hopefully they don't also learn how to leave dishes in the sink and ignore WhatsApp calls from mom, because वो तो सिर्फ human error हो सकता है। और इसी बात पर चलाते कुछ मिर्चीदार गाने, तब तक तुम जाकर मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पे मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन। Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
3: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: वेलकम बैक टू मिर्ची मॉर्निंग्स. इट्स ऑलमोस्ट द एंड ऑफ दिस आवर और यहाँ पर हम बातें करते हैं वेदर के बारे में. सो राइट नाउ इट्स अराउंड 48 डिग्रीज फारेनहाइट आउटसाइड एंड बिकॉज ऑफ द विंड इट्स फीलिंग लाइक इट्स 44 डिग्रीज फारेनहाइट. मतलब वेदर जो है वो बेसिकली आज हमारे साथ कैटफिशिंग कर रहा है. दिख कुछ और रहा है, एक्चुअली कुछ और है. राइट नाउ स्काईज आर मोस्टली क्लियर, सो इफ यू आर ड्राइविंग टू वर्क विद सनग्लासेस एंड कॉन्फिडेंस, इंजॉय इट व्हाइल इट लास्ट. क्योंकि 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में वी विल हैव partly cloudy skies and by 2 p.m. it's going to be mostly cloudy. यानी कि sky जो है वो अचानक से बोलेगा I need to be left alone. Today's temperature will hang between 47 to 67 degrees Fahrenheit. That is pretty 6-7. Good news though is zero rain in last 24 hours and zero rain is expected in the next 24 hours too. So, aaj freshly washed car can finally stop living in fear. वैसे आज का weather is giving peak immigrant life energy. काफी दिल्ली type के weather की, specially wedding season वाले weather की feels दे रहा है. So, layer के player बनो, keep your chai emotionally supportive and साथ साथ में अपना SPF 50++++ लगाना बिल्कुल मत भूलना. एंड हाँ, पानी पीना मत भूलना जो कि तुम हमेशा भूल जाते हो. कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड. और अभी तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए कुछ मिर्चीदार गाने मैं प्ले करने वाली हूँ तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ मिर्ची मॉर्निंग्स पर एक्सक्लूसिवली विद मी, बोले तो प्रिसिला. मुझे जाकर फॉलो भी कर लो इंस्टा और एक्स पर. माई हैंडल नेम इज मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647224. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hello there, my desi people. मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे तो मिर्ची मॉर्निंग. जरा बारी आ चुकी है हम पता करें दुनिया में क्या चल रहा है. सबसे पहले ड्यूरिंग हिज चाइना विजिट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग कॉल्ड अमेरिका अ डिक्लाइनिंग नेशन एंड ट्रंप जी ने रिस्पॉन्ड किया है इस पर कहते हुए शी वाज रेफरिंग टू द प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन एंड नॉट हिज करंट टर्म. एंड नंबर टू पर ट्रंप जी ऑल्सो स्पोक अबाउट शी जीज प्रेजेंस ऑन स्क्रीन सेइंग ही इज वेरी वेरी टॉल एंड हैज दैट काइंड ऑफ लुक हॉलीवुड वुड स्ट्रगल टू कास्ट. ऑनेस्टली इमेजिन बीइंग सो पावरफुल पीपल आर डिस्कसिंग योर बायोपिक casting before the trailer even exists. And finally, cricket se number 3 par Rohit Sharma roasted himself after scoring 25 off of 26 balls against Punjab Kings. During the Mumbai Indian dressing room speech, he joked that while everyone else was batting fast, he was busy playing test cricket. Waise ise kehte self-awareness level 3000. And that's it for Mirchi Hour ka 3 for this hour with me Priscilla. Abhi mujhe follow karo Mirchi Pris ke naam se dhoono mujhe Insta aur X pe. मेरा हैंडल है वो एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची. दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: कहिए, क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए, कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

0: Milchi. Escabana, buscabana, sacabana. Gran bala. Burga, burga. La bien bala, burga.
1: Milchi, burga.
2: Hello.
3: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो। और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे who's this?
2: कौन बोल रहा है
3: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
2: क्या मजाक चल रही है?
3: क्या मजाक चल रहा है? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कोवेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
4: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बड़े। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कू।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ only on मिर्ची it's hot
6: yep hot।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: नमस्ते इस्लाम एंड सस्त्रीकाल भाई और बहनों, आई एम सुजीत सिंह रनिंग फॉर कांग्रेस इन NJ12, ए हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग योर वॉइस टू वाशिंगटन। विजिट singforcongress.org एंड गेट एंगेज्ड।
10: June 2nd, 2026. Early voting dates, May 26th to May 31st. Sujit Singh is the change we need.
9: Paid for by Sujit Singh for Congress.
11: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
12: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
13: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
14: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
15: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
14: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
15: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
14: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
16: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
17: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
18: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
19: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
18: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
18: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
12: एक ही होता है।
18: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, my desi people. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ मैं सुन रही हूँ मिर्ची मॉर्निंग्स. एंड अ बिग विन फॉर इंडिया एट द थाईलैंड ओपन 2026 इन बैंकॉक. इंडियाज पावर डुओ सात्विक साईराज रणकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी स्मैश देयर वे इनटू द मेंस डबल्स सेमीफाइनल्स. एंड नॉट जस्ट अ टाइनी विन, ओके, दे डिफीटेड जापान्स टाकुमी नोमोरा एंड युइची शिमागामी विद अ सुपर सॉलिड स्कोर लाइन, दैट्स 21-12 एंड 21-13. Honestly, that score was less match and more respectfully demolished. Meanwhile, in women's singles, India's PV Sandhu fought hard but crashed out in the quarterfinals against Japan's Akane Yamaguchi. Sindhu actually took the first game 21-19, but Akane made a comeback and won the next two. And can we just please appreciate badminton players for a second, because one rally lasts longer than most situationships in New York City. Also, फटाफट से तुम्हें याद दिला दूं कि आरके जूल्स कह रहे हैं गेट रियल डायमंड ज्वेलरी एट रियल प्राइजेस. जीरो लेबर चार्जेस हैं वहां पर और जीरो एक्स्ट्रा चार्जेस तुम्हें पे करने पड़ेंगे. यू जस्ट पे फॉर द गोल्ड एंड डायमंड्स दैट यू बाय. तो बेसिकली तुम खुश, तुम्हारा वॉलेट खुश और ज्वेलरी पाने वाला भी खुश. तो फटाफट से आरके जूल्स पर पहुंचो अगर तुम्हें कुछ ज्वेलरी शॉपिंग करनी है तो. और फिलहाल मिर्चीदार बैंगर्स अगर सुनने हैं तो सुनते रहो मुझे, यानी कि प्रिसिला को, मिर्ची मॉर्निंग्स पर. और मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. And WhatsApp पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Priscilla, it's hot.
1: हेलो माय बर्थडे बेबीज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और मिर्ची मॉर्निंग्स। और आज का दिन सीरियसली इज स्टैक्ड विद स्टार पावर। सबसे पहले आज के दिन है माधुरी दीक्षित जी का हैप्पी वाला बर्थडे, द वुमन हु स्माइल अलोन कुड फिक्स ग्लोबल सैडनेस। ऑल्सो यू शेयर योर बर्थडे विद ब्रिटिश टेनिस चैंप एंडी मरे। म्यूजिक लवर्स से हेलो टू ब्रायन एनो एंड फॉर माई टॉलीवुड स्क्वाड बर्थडे विशेज टू राम पटिनेनी। ऑल्सो बॉर्न टूडे इंडियन म्यूजिक कंपोजर संतोष नारायणन एंड एक्ट्रेस होस्ट Anusuya Bhardwaj, and Hollywood faces like Alexandra Breckenridge from Virgin River and Jamie Lynn Sigler from The Sopranos. And to everyone celebrating today, whether you're turning 21 or just turning emotionally unavailable, I hope your day is filled with love, laughter, happiness, cakes and no calories. And hey, agar birthday shoutouts bhejne hai to mujhe message kar sakte ho Insta aur X pe, mera handle hai Mirchi Priz, that is MirchiPris, and WhatsApp pe mera number hai 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
4: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: ऑलराइट, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब बारी आ चुकी है सोना एंड चांदी का रेट जानने की।
2: राज जोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड रीडिंग एट $4,600, $4,600 पर ट्रेंड के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेंड कर रहे हैं, जो पिछले हफ्ते से थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड पर है। आने वाले मदर्स डे की सेलिब्रेशन के लिए 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड, 0% इंटरेस्ट पे, 0 डाउन पेमेंट के साथ आज गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए 12 इंस्टॉलमेंट्स में ज्वेलरी घर लेके जाएं और बिना किसी इंटरेस्ट के राज ज्वेल्स की टीम को पैसे दें। ये बहुत यूनिक फाइनेंसिंग ऑप्शन है ज्वेलरी की, जिसके अंदर आप पहली 12 किस्तें पे करने के बाद सेम क्रेडिट कार्ड दोबारा यूज कर सकते हैं नेक्स्ट परचेज की राज ज्वेल्स के साथ। सो आइए मिलके सेलिब्रेट करते हैं और गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं RajJewels.com के साथ। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू।
1: एंड देयर यू हैव इट, मिर्ची पर गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ में। और अब मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।
0: दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स, किंगडम ऑफ ज्वेल्स, वेयर ट्रेडिशन मीट्स स्टाइल।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स, और अब हम पता करेंगे दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। नंबर वन पर इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी हैज ऑफिशियली लैंडेड इन अबू धाबी, विच इज द कैपिटल ऑफ यूएई, एज पार्ट ऑफ अ 6-day 5-nation टूर। ही रिसीव्ड अ फुल गार्ड ऑफ ऑनर आफ्टर लैंडिंग, एंड द ट्रिप विल ऑल्सो इंक्लूड विजिट्स टू द नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे एंड इटली। And number two per, this one looked straight out of a Hollywood movie trailer. UAE F-16 fighter jets escorted PM Modi's aircraft as it entered Emirati airspace. मतलब कि full VIP treatment मिल रहा है मोदी जी को वहाँ पर। And number three per, a sigh of relief for NEET undergraduate students. Education Minister Dharmendra Pradhan announced that candidates appearing for the 21st June re-exam will get an extra 15 minutes. Students will also get a week to choose exam centers, and there will be no extra exam fee charged. After all the stress around the cancelled May 3rd exam, students in India are probably reacting with a lot of relief. And that was Mirchi Hour Ka 3 with me Priscilla on Mirchi Mornings. Abhi filhal mujhe follow karo Insta aur X par, mera handle hai Mirchi Pris, and WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi.
1: Iscaba la puscaba la sacaba la. ¡Rámbala! Murga, murga. La vieja la murga.
0: Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Hi, ye call बैंक से है. आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है. हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा. पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं.
4: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज.
2: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
4: एटीएम वाला पासवर्ड है सर. ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
2: हूँ. एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं.
4: हाँ जी,
2: हाँ बोलिए.
4: 33501.
2: अच्छा
4: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ. शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए जरा इनको. ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला.
2: हेलो,
4: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा. हाँ, मैं फोन मिलाता हूँ. हेलो डार्लिंग, हाय.
5: हाय.
4: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
5: विक्की का पासवर्ड 33501. एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है.
4: धोबी से
5: पूछ लीजिए.
4: अच्छा ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड.
2: हेलो
4: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर.
6: ये बेल जा रही है.
4: हेलो भैया. हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ. आप हमारे कपड़े धोते हो?
2: अरे भाई तो एक बात सुन, ये
4: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501 है सर. हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है. मेरी बात सुनिए ना.
2: किससे पूछे जा रहे हैं?
4: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर आपके पास.
2: ये क्या कंफर्म भाई, मेरा एटीएम कार्ड है.
4: ये एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
2: मुझे बताना है, सबको थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह
4: नहीं तो
2: थोड़ी ना.
4: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था. बेकार में एप्लीकेशन डाल दी, टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते.
6: विके, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है. 33501.
2: किसने दिया मेरा नंबर?
6: आपका नंबर आशा ने दिया, उन्होंने कहा था.
2: अरे मैं खुकड़ू को.
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
8: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
9: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
10: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
11: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
10: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
11: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
10: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
12: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
13: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
14: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
15: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं, सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर. ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hello guys, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में and this is Mirchi Mornings and now we are heading into Rashi Zone number 1.
2: Mirchi Rashi Zone.
1: एरीज याने मेष राशि, मनी मैटर्स आर कॉलिंग एरीज, आज इम्पल्स शॉपिंग पे थोड़ा सा कंट्रोल रखो. जस्ट बिकॉज इट सेज लिमिटेड एडिशन डजंट मीन योर क्रेडिट कार्ड शुड क्राई लेटर. लकी कलर फॉर यू इज वायलेट, लकी नंबर इज 18. टॉरस यानी कि वृषभ राशि, द यूनिवर्स इज बेसिकली योर हाइप स्क्वाड टुडे. व्हाटएवर यू स्टार्ट नाउ कैन सीरियसली ग्रो बिग लेटर. कॉन्फिडेंस पे फुल वॉल्यूम रखो. लकी कलर फॉर यू इज सेज, लकी नंबर इज 4. जेमिनी यानी मिथुन राशि, यू आर फीलिंग फियरलेस टुडे. And honestly, main character energy आ गई है. बस overconfidence में reply all मत कर देना ऑफिस ईमेल पर, समझे. लकी कलर इज टैंजरीन, लकी नंबर इज 1. कैंसर यानी कर्क राशि, योर माइंडसेट इज पावरफुल टुडे. पॉजिटिव सोचो, बोल्ड मूव्स लो और अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना बंद करो फॉर गॉड्स सेक्स. लकी कलर फॉर यू इज येलो, लकी नंबर इज 29. लियो यानी कि सिंह राशि, करियर स्पॉटलाइट इज फुली ऑन यू बेबी. वीकेंड तक कुछ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज या अप्रिसिएशन मिल सकता है. वाओ, वॉक इन लाइक योर पुष्पा फ्रॉम Pushparaj with your background music playing. Lucky color for you is crimson red. Lucky number is 7. Virgo yani kanya rashi, adventure mode activate kar lo. Break the routine thoda sa. Same grocery store, same playlist, same sadness. Enough yaar. Try something new. Lucky color for you is mustard color. Lucky number is 31. And that's it for first half of Rashi Zone. Main hu Prisala tumhare saath mein. This is of course Mirchi Mornings. Thodi si der mein lekar aati hu Rashi Zone part 2. Tab tak तुम सुनो मिर्ची दार बैंगर्स एंड गो एंड फॉलो मी इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647224. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

ये क्या 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं आ।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, dreamers. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स, और अब सुनोगे राशियों का हालचाल।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: Libra यानी तुला राशि, आज थोड़ा सा केयरफुल रहो विथ न्यू पीपल। योर इंट्यूशन इज शार्पर देन योर मॉम नोटिसिंग 1 kilo वेट गेन ऑन फेस टाइम। आज के दिन ट्रस्ट योर गट। लकी कलर फॉर यू इज पर्पल, लकी नंबर इज 22। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, यू यूजुअली लव कंट्रोलिंग द प्लान, बट टुडे लेट अदर्स टेक द लीड। सरप्राइज सरप्राइज, दे मे एक्चुअली नो व्हाट दे आर डूइंग। लकी कलर फॉर यू इज मिडनाइट लैवेंडर, लकी नंबर इज 9। Sagittarius यानी धनु राशि, बॉस यू नीड रेस्ट, योर बॉडी एंड ब्रेन आर बोथ सेंडिंग HR complaints। स्लो डाउन टुडे एंड रिचार्ज विदाउट एनी गिल्ट। लकी कलर फॉर यू इज कोरल ऑरेंज, लकी नंबर इज 14। Capricorn यानी मकर राशि, पीपल थिंक यू आर क्वाइट, बट प्लॉट ट्विस्ट, यू आर एम्बिशियस AF। समथिंग यू डू दिस वीकेंड माई जेन्युइनली शॉक पीपल इन अ गुड वे। लकी कलर फॉर यू इज चारकोल ग्रे, लकी नंबर इज 36। Aquarius यानी कुंभ राशि, टू मेनी प्लान्स, टू मेनी टैब्स ओपन, मेंटली रिलैक्स करो यार, वन स्टेप एट अ टाइम लो, इवन योर गूगल मैप्स रिकैलकुलेट्स कैमली। लकी कलर फॉर यू इज आक्वा मिंट, लकी नंबर इज 5। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसीज यानी कि मीन राशि, सोशल बटरफ्लाई वाइब्स ऑन हो गई है आज के लिए। गो आउट, मीट सम पीपल, मेक सम कनेक्शन, से यस टू ऑल द प्लान्स। समवन यू मीट नाउ कुड बिकम सुपर इम्पोर्टेंट लेटर। लकी कलर फॉर यू इज रोज गोल्ड, लकी नंबर इज 27। एंड दैट्स इट फॉर योर मिर्ची राशि जोन नंबर 2। रिमाइंडर, स्टार्स सिर्फ गाइड करते हैं, लेकिन असली एक्शन तुम्हें लेना है। मैं हूं प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स, और अगर तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो इंस्टा और एक्स पर, तो मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। इट्स ऑलवेज लवली टू हियर फ्रॉम यू। राइट नाउ मिर्ची, देयर बैंगर्स का टाइम है, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
4: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
5: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
6: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
7: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
6: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
8: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
6: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
9: एक ही होता है।
6: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: बचपन में कोई भी काम करने से पहले हम ऐलान कर दिया करते थे, जैसे कि अगर जोक सुनाने की भी बात होती थी ना तो हम यही बोलते थे, एक चुटकुला सुनाओ।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. And वाकई में यार, मतलब बचपन में एक तो हम कहां कहां से तरह तरह के जोक्स उठा के लेकर आया करते थे, और एक ये डायलॉग, जोक सुनाने से पहले ये तो फर्ज बनता था, एक चुटकुला सुनाऊं। आज तो कॉमेडी कहां से निकल जाती है पता ही नहीं लगता, लेकिन तब हमें इजाजत लेने की इतनी ज्यादा आदत थी कि चुटकुला सुनाने के लिए भी हम पहले इजाजत लिया करते थे। इट्स जस्ट लाइक, मैम मे आई कम इन, हाँ बेटा कम इन, वैसे ही चुटकुला सुनाओ, हंसना ना, तो हम सुनाना शुरू करेंगे जब तक कोई हाँ नहीं बोल देता। एंड यू नो, इससे मुझे एक और बात बड़ी प्यारी सी याद आई, और वो ये कि एट दैट टाइम आपके पास जोक्स के लिए या तो स्कूल हुआ करता था, दोस्त हुआ करते थे, या आपके कजन्स आपको जोक्स बताया करते थे। ये सोशल मीडिया या फिर यू नो गूगल तो था ही नहीं कि आपको जोक्स पता होते कहीं से, आप कहीं से टीप लो किसी को इम्प्रेस करने के लिए या हंसाने के लिए, तो एट दैट टाइम ये लोग हुआ करते थे। एंड आई रिमेम्बर नाउ कि मैंने एक जोक बुक खरीदी थी, हाँ एक जोक बुक जिसके अंदर जोक्स पे जोक्स लिखे हुए थे, और फिर वो जोक्स जो थे मैं पढ़ने के बाद समझने की पहले कोशिश किया करती थी, उसके बाद फिर उसको सुनाने की कोशिश किया करती थी, लेकिन सच बताऊं तो सारे जोक्स एक साइड और हाथी और चींटी के जोक्स एक साइड, बेस्ट जोक्स ऑफ दोज टाइम्स। इनफैक्ट आज भी वो जोक्स अगर कोई सुना देता है ना तो भी हंसी आ जाती है। चलो जी, इसी बात पर मिठे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हुई आपसे कहती हूँ, यू स्टे ट्यून विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La virba la burka.
1: Milci, burka. Hello.
2: Sir, very good evening, man. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
1: हाँ जी बोलिए।
2: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
1: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
3: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
1: कौन बोल रही है?
2: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
1: क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही?
4: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
1: हेलो कौन बोल रहा है?
2: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
1: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
3: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
1: हेलो मैडम।
2: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
1: कौन बोल रहा
2: है? रमेश बोल रहा हूँ सर। से
1: अभी कोई और बोल रही थी।
2: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
1: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
5: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
1: कौन बोल रहा है?
2: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
1: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
6: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
1: कौन बोल रहा है भैया?
2: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? सर
1: कभी किसी की आवाज आ रही है, कभी किसी की आवाज आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
7: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
2: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आप सर फोन मत काटिएगा।
8: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, अब मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दे जरा हंस के।
9: थैंक यू
10: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटा।
11: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
12: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
13: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
14: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
15: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
14: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
16: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जद एक दूजे दे नाल काम ना करे।
17: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा।
18: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
13: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
19: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
19: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: वैसे तो इनकी मूवीज देखकर दुनिया का दिल धक धक करता है, लेकिन आज कुछ एक्स्ट्रा धक धक कर रहा है।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, हमारा दिल एक्स्ट्रा धकधक इसीलिए कर रहा है बिकॉज ऑफ द रीजन कि आज माधुरी दीक्षित का बर्थडे है बॉस। आज मिस्टर नैने खुश तो बहुत होंगे। एनीवेज, यू नो, माधुरी दीक्षित की मूवी हम आपके हैं कौन मैंने कितनी बार देखी है, कई 100 बार तो देख ली होगी। अब तो वो मूवी चल रही होती है ना, तो मुझे पता होता है कि कौन सा डायलॉग आने वाला है। यार, मैं म्यूट करके मूवी देख सकती हूँ, और म्यूट करके ऐसे कि मैं डायलॉग बोल रही होंगी और म्यूट पे मूवी चल रही होगी, तो एकदम परफेक्टली सिंक डायलॉग्स निकलेंगे मेरे मुंह से। एंड दैट इज ट्रू, हम मजाक नहीं कर रही हूँ। और मेरी यह बात करें यार, MF हुसैन साहब द ग्रेट पेंटर, आपको पता है उन्होंने हम आपके हैं कौन कितनी बार देखी थी? 60 बार देखी थी। उन्हें माधुरी दीक्षित इतनी पसंद आई थी ना कि वो उनके इतने क्रेजी द फैन हो गए कि उन्होंने 60 बार तो हम आपके हैं कौन देख ली, और उसके बाद अपने काफी सारे पेंटेड वर्क्स को उन्होंने माधुरी दीक्षित को डेडिकेट किया है। यही नहीं, एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने तो माधुरी दीक्षित के ऊपर एक पूरी की पूरी मूवी बना दी। वो अलग बात है कि वो फिल्म नहीं चली, लेकिन हाँ ये नहीं है कि MF हुसैन साहब की फैनगिरी में कोई कमी आई हो, नेवर एवर। After all, that's Madhuri Dixit that we're talking about. और बचपन में मैं भी माधुरी दीक्षित बनना चाहती थी। Coming up more on Madhuri Dixit today, you stay tuned with me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi, it's hot.

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन. Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
4: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.

0: की बात करें तो यार माधुरी दीक्षित के फैंस नहीं है, उनके तो एसीज हैं भाई।
1: सारा जमाना ए सारा का दीवाना।
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड मजाक की बात नहीं है भाई, माधुरी दीक्षित की फैन फॉलोइंग वाकई बहुत क्रेजी रही है और बहुत लंबी रही है। शी रियली रूल्ड द इंडस्ट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड एंड इन फैक्ट दैट वाज वेरी वेल डिजर्व्ड। बट नॉट मेनी नो कि माधुरी दीक्षित के एक फैन ने उनके लिए एक मंदिर बनाया इन आंध्र प्रदेश। बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, ऑफ कोर्स इट्स अ छोटा सा मंदिर, जहां पर ये कहा जाता है कि वो बंदा जो है वो ऑन अ डेली बेसिस रिचुअल्स भी करता है। बाप रे, आई मीन मैं भी माधुरी दीक्षित की फैन हूँ, लेकिन ये नेक्स्ट लेवल है यार। एक माधुरी दीक्षित है जिनको मैंने शायद ही कभी किसी इंटरव्यू में सुना होगा ये बोलते हुए कि उनके नाम पर एक टेम्पल है, और एक उर्वशी रौतेला। Anyways, no comparisons, but you stay tuned with me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi. It's hot.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: It's 12 PM Mirchi time check.
2: Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
3: Ghana Indie Top 10. Kanika ke saath on Mirchi.
4: Mirchi sun rahe hain aap. Bandi ka naam hai RJ Kanika. It's time for the hottest pop music of the week. Hello and welcome. This is the Ghana Indie Top 10. Only show on Mirchi jahan hafte ke top 10 hottest pop gaano ka countdown hum aapke liye lekar aate hain. Connect with me Instagram par jao. Mera handle is @RJKanika. Koi gaana suggest karna hai, koi baatein batani ho, bindaas aake hit me up. हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री है. हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है ऑल दिस एंड मोर. तो सीधा शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की. गाना नंबर 10 पर इस गुरु रंधावा का गाना, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, उन्हीं की आवाज. गाने का नाम है वोग. पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे गिर के वोग इस हफ्ते ऑन गाना नंबर 10. उसके बाद शुभ का नया नवेला गाना मूव्स इस हफ्ते डेब्यू मार के ऑन गाना नंबर 9. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
3: Number 10. 10, 10, 10.

0: गुरु रंधा की आवाज में एक गाने का नाम है वोग, दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। मैं गुरु रंधावा का गाना सुनती हूँ, सुन के तो मुझे पता है इट्स अ गुरु सॉन्ग, पर अक्सर नाम नहीं याद रहता, बिकॉज मोस्टली गाने मुझे एक जैसे साउंड करते हैं। पर कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कहीं से उसका एक इंस्ट्रूमेंटल या इंट्रो म्यूजिक भी सुन ले तो पूरा गाना याद आ जाता है।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे करेगा। इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, फॉलो करना एकदम फ्री है। मुझे पता है आप फोन ही चला रहे थे अपना, @RJKareka और इंस्टाग्राम पर आके क्विकली से हेलो। कोई गाना शेयर करना हो बिंदास आके हिट मी अप। कभी ऐसा होता है ना, दोस्तों के साथ बैठे हैं, रेडियो पे कोई गाना बस शुरू हुआ है, इंट्रो म्यूजिक प्ले हुआ है एंड आपने एकदम बता दिया कि अरे दिस इज दिस सॉन्ग, एकदम फुल ऐसे सुप्रीम फीलिंग आती है दैट आई एम बेटर देन यू ऑल, मैं ज्यादा कल्चरली रिच हूं, मैं ज्यादा अच्छा म्यूजिक जानती हूँ तुमसे। बहुत सही फीलिंग होती है, शाबाश, पैट ऑन योर बैक। लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं कि जैसे ही वो इंट्रो म्यूजिक बजता है आपको नहीं, गाड़ी में चारों दोस्तों को गाना याद आ जाता है, बिकॉज वो गाना, वो इंट्रो म्यूजिक इतना आइकॉनिक होते हैं। पिछले हफ्ते हमने आपको एक गाने का इंट्रो म्यूजिक सुनाया था, आपको गेस करना था कौन से वाला गाना है। प्लेइंग इट राइट अगेन फॉर यू। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे राइट आंसर्स आएंगे, क्योंकि ये गाना एक साल पुराना भी नहीं है। गाने का नाम है अर्ज किया है बाय अनूप जैन, इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। इस काउंटडाउन पे आगे ये गाना आने वाला है, कौन से नंबर पे उसके लिए वेट करना पड़ेगा। पर जितना पॉपुलर ये गाना हो चुका है उतना ही सिनोनिमस ये इंट्रो पीस हो गया है। @RJKareka इंस्टाग्राम पर आओ, अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ाओ, मैं एक और गाने का इंट्रो म्यूजिक आपके लिए प्ले करने वाली हूँ। ध्यान से सुनो और बताओ ये कौन सा गाना है। जल्दी जल्दी आके @RJKareka और इंस्टाग्राम पर मुझे बताओ, मेरे दिमाग में तो गाना, गाने के विजुअल्स, वीडियो सब आ गया है। शो में आगे चल के ये गाना मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अभी काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हैं, दिलजीत दोसांझ की आवाज में, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है डीलर। पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडिया टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: नंबर 8।

0: Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, sakka bana. Ya bana. Murga, murga. Naveed wala murga. Mirchi murga.
2: Hello.
3: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया हेलो और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे who's this?
2: कौन बोल रहा है
3: ये और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये
2: क्या मजाक चल रही है
3: क्या मजाक चल रहा है ये सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कॉमेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ सर क्या हाल चाल है आपके सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं सर कैसे हैं आप खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए
4: मिर्ची मुर्गा मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई क्या आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बड़े और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू
2: कुकड़ू
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan, Italia.
8: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
9: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
8: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
10: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
11: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
12: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
13: Tera kya hoga, Kalia?
14: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार
13: अब मिर्ची खा
0: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट

0: पिछले हफ्ते से तीन पोजीशन ऊपर जम गया है ये गाना. गाने का नाम है ए अजनबी, आदित्य रिखारी की आवाज अलोंग विद कुटले खां एंड रैविटोर. इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग. ए अजनबी वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उससे पहले संजू राठौड़ का नया नवेला गाना, गाने का नाम है बैंगल्स, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका. दिस इज गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का रिपोर्ट कार्ड हम आपके लिए लेकर आते हैं. इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika. द शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक. लेकिन म्यूजिक की बात पता है क्या होती है, इट मेक्स यू ट्रैवल इन टाइम. कोई भी धुन कभी भी हमको जिंदगी के किसी किस्से में ले जाती है. लाइफ की मेमोरीज की जो बुक लिखी हुई है हमने, उसका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 कभी भी खुल जाता है. अभी रिसेंटली एक वीकेंड पे मेरे साथ ऐसा हुआ. मैं कैफे में थी, थोड़ी कॉफी पी रही थी, आई वॉज एंजॉइंग द वाइब, सेल्फी खींच रही थी, आई वॉज ट्राइंग टू बी इन द मोमेंट, एंड एक गाना चलता है उस कैफे में. वो गाना सुनते ही मैं अपनी लाइफ की मेमोरीज के चैप्टर नंबर 2019 में जा पहुंची. वो गाना मेरे को बिल्कुल ट्रांसपोर्ट करके इसी स्टूडियो में लेकर आया जहां मैंने वो गाना आपके लिए सबसे पहले प्ले किया था.
2: वास्ते जा भी दूं, मैं गवाही मां भी दूं, किस्मतों का लिखा मोड़ दूं.
0: गाने का नाम है वास्ते, ध्वनि भानुशाली, निखिल डिसूजा का गाना. एंड ऑनेस्टली मुझे लगा भी नहीं था कि मुझे एंड टू एंड इस गाने के लिरिक्स याद रहेंगे, बट आई हैड आई कॉन्टैक्ट विद एक दो लोग जो मेरे राइट वाली टेबल, लेफ्ट वाली टेबल पे बैठे थे, एंड वो भी इस गाने के साथ लिप सिंक कर रहे थे. एंड आई रियलाइज दैट सम सॉन्ग्स हैव एन इम्पैक्ट जो आप डिफाइन ही नहीं कर सकते हो. आई रिमेम्बर 2019 में दिस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉप सॉन्ग्स ऑफ द ईयर. इनफैक्ट गाना इंडी टॉप 10 का बेस्ट ऑफ 2019 में वास्ते वॉज नंबर 1 सॉन्ग. इस गाने ने कई सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए. ये पहला ऐसा नॉन फिल्म गाना था जिसने यूट्यूब पे 1 बिलियन व्यूज क्रॉस किए. उसके बाद कई गानों के साथ ऐसा हुआ, बट आई हैव टू रिमाइंड यू दैट इस गाने ने वो इफेक्ट क्रिएट किया जो एक फिल्म का गाना करता है. जहां इट डजंट मैटर कि ये गाना कौन सी फिल्म पे है, किस पे दर्शाया है, अगर कभी आपने सुना तो मेरे जैसे उस कैफे में बैठे बैठे आप एक गाना गाना शुरू कर देते हैं. तो अपनी रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग, तनिष्क बागची की कॉम्पोजिशन, ध्वनि भानुशाली की आवाज, लेकिन इस गाने के स्टार है निखिल डिसूजा. ट्रस्ट मी, ये गाना मैंने यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम रील्स, हर जगह सुना है, पर कुछ तो बात है, ये गाना रेडियो पे कुछ ज्यादा ही खूबसूरत साउंड करता है. दिस इज वास्ते प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: ट्वेंटी टॉप टेन कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Are you a South Asian parent of a child with disabilities or special needs looking to connect with similar families? Reach out to SKN Foundation's SCOPE program for their parent support group, educational empowerment programs, IEP consultations, job skills training for teens, and inclusive events year-round.
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
6: ओक ट्री रोड लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च इस्तनारा कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर।
5: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स, GIA सॉलिटेयर्स, नेकलेसेस, रिंग्स मरियु स्टनिंग पेंडेंट्स। कृष्णा ज्वेलर्स, ओक ट्री रोड, इज़लिन।
7: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
8: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
7: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
9: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
7: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
10: एक ही होता है।
7: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Diljit Dosanjh, the man you are, and what a collaboration with Sia, gaane ka naam hai Ranja. Pichle hafte se ek nahi, do nahi, teen nahi, char bhi nahi bro. Pure 6 positions upar jump karkar, Ranja was this week on Gaana number 4.
1: Gaana Indie Top 10. Gaana Indie Top 10. Kanika ke saath.
0: मिर्ची सुन रहे हैं आप. दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक. वो कहते हैं हर गाना अपना लिस्नर ढूंढ लेता है, पर पता नहीं कुछ गाने हमको रात को ही ज्यादा अच्छे क्यों साउंड करते हैं. लाइक रियली थिंक अबाउट इट, देयर आर सम सॉन्ग्स जो आपने दिन में 2-3 बजे सुना तो ठीक है, यू विल गिव इट लाइक अ 6/10. वही गाना 2 AM पे हिट्स राइट इन द फील्ड्स, दिल के सारे इमोशंस उमड़ जाते हैं. और ऐसा ही एक गाना मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया है, उसका नाम है जुल्फे बाय साहिल. दो बड़ी टॉर्चेस के साथ इस गाने पर हम एक स्पॉटलाइट मारना चाहते हैं, बिकॉज ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल आर्टिस्ट. साहिल ने अपनी जर्नी बहुत सारे आर्टिस्ट की तरह कवर्स गाकर ही शुरू करी थी, मैशअप्स गाई, वहीं से अपनी ऑडियंस बिल्ड करना शुरू किया. एंड धीरे धीरे जब लोग उन्हें ट्रस्ट करने लगे, उनके म्यूजिक के साथ जुड़ना शुरू करे, उन्होंने अपना ओरिजिनल म्यूजिक अपने फैंस के साथ शेयर किया. एंड फैंस ने कस के प्यार दिया, बहुत ओपन रहे उन एक्सपेरिमेंट्स के लिए, एंड दे केप्ट आस्किंग फॉर मोर न्यू सॉन्ग्स. उन्हीं में से एक गाना है जुल्फे. इट्स अ प्रॉपर लेट नाइट कन्फेशनल सॉन्ग, ऐसा मोमेंट जब आप किसी को कॉल नहीं करते हैं लेकिन उनके बारे में सोचना बंद भी नहीं कर पाते हैं. रियलिटी इमेजिनेशन के बीच का जो स्पेस है, जिसको मे बी आप ओवर थिंकिंग कहते हैं, बट उसका भी अपना मजा है. इट्स क्वाइट R&B सॉन्ग, वेरी इंटीमेट, वल्नरेबल है, दैट्स साहिल की स्पेशलिटी. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. आज की हमारी गाना स्पॉटलाइट में दिस इज जुल्फे बाय साहिल, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इन द टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. Oh, sure.

0: साहिल की आवाज में दैट वॉज जुल्फे फॉर ऑल द लेट नाइट थिंकर्स. अगर आप थोड़ा ओवर थिंक करते हैं, ये गाने को बैकग्राउंड में लगाकर करना एटलीस्ट बेटर रहेगा. एट आरजे कनेक ऑन इंस्टाग्राम पर आके मेरे साथ अपने 2 AM वाली प्लेलिस्ट शेयर करो. आई माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन. अगले वाला गाना इज मेरा आपका सबका 2 AM, 2 PM, 3 PM, 5 PM सॉन्ग. ये गाना 15 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार है. अनूप जैन की आवाज में गाने का नाम है अर्ज किया है. इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग. पिछले हफ्ते से एक पोजिशन नीचे ड्रॉप होके अर्ज किया है इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इन द टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 3.

0: गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सबको ये गाना बहुत पसंद है। 23 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप किया है करण औजला इक्की का बॉयफ्रेंड दिस वीक ऑन गाना नंबर 2।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: यू आर लिस्निंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। गाना नंबर 10 से गाना नंबर 2 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। बिफोर वी मूव ऑन टू द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल
1: कनिकास कसर क्लासिक।
0: हमारी कैसेट क्लासिक जहाँ पर हम 90s 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वाज एंड द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज गाने का नाम है तू बाय द वन एंड ओनली सोनू निगम। सोनू निगम का नाम ही काफी है, ही इज अ फुल रेंज म्यूजिशियन। जितने पॉपुलर सोनू निगम एज अ हिंदी प्लेबैक सिंगर हैं, उतने ही पॉपुलर वो एज अ पॉप स्टार भी हैं। नाउ थिंक अबाउट इट, इंडिया में पॉप स्टार्स कब बने? मतलब गाने बहुत बड़े हो जाते थे, पर उन गानों को हम वो गाना किस मूवी में आया है या उस गाने में कौन सा एक्टर एक्ट्रेस है उससे याद रखते थे। देन केम अ वेव ऑफ आर्टिस्ट अर्ली 90s लेट 90s में, ये पॉप स्टार्स जैसे कि सोनू निगम, शान, लकी अली, जिन्होंने इंडियन इंडी पॉप म्यूजिक को आगे बढ़ाया, जिनके गानों की म्यूजिक वीडियो में कोई बड़ी फिल्मों के हीरो नहीं बल्कि आर्टिस्ट खुद फीचर होते थे, एंड सोनू निगम वाज द पोस्टर बॉय ऑफ दैट चेंज। अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाना शुरू किया उन्होंने। ऑल्दो वो बहुत बड़ी फिल्मों के लिए ऑलरेडी प्लेबैक सिंगिंग कर रहे थे, बट उन्होंने इंडिपेंडेंट पॉप म्यूजिक को भी उतना ही स्पेस एंड अटेंशन दी, एंड उस फेस का ये सबसे मस्ती भरा गाना है। The song is young, very peppy, एक flirtatious energy है, and किसी movie का scene बनने की जरूरत नहीं थी because in its own इस गाने ने अपनी एक cinematic दुनिया बनाई। इस गाने में सोनू निगम के साथ बिपाशा बासु is the featuring actor. It was a youth favorite back then, it is till now, तो अपने radio sets की volume बढ़ा दीजिए सोनू निगम की आवाज में, the forever iconic गाने का नाम है तू, it's playing right next for you on our cassette classic this week। बंदी का नाम है कनिका, enjoy.

0: यार ये गाना सुनते हुए लगता है कि टोपी पहनूं और उस टोपी को उल्टा कर दूं. समथिंग अबाउट दिस सॉन्ग विच जस्ट सर्व्स स्वैग. सोनू निगम की आवाज में दैट वॉज टू ऑन आवर कैसेट क्लासिक दिस वीक. एल्बम का नाम है किस्मत. म्यूजिक है बिडू का.
1: चुस्कियों में न सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में. क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर. सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज. न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला. कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन.

0: ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਤਾ ਲੈ ਲਾ
1: ਮਰ ਜਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਭੰਗੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ।

0: द फिनोमिनन कॉल्ड माधुरी दीक्षित। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और ये फिनोमिना ना पहले साइंटिस्ट बनना चाहता था। सुनिए एक इंटरव्यू में माधुरी दीक्षित ने एक बार क्या शेयर किया था।
1: मैं साइंस स्टूडेंट थी, माइक्रोबायोलॉजी करना चाह रही थी और मैंने सोचा था, तभी मेरा ड्रीम थी कि मैं जेनेटिक्स में रिसर्च करूंगी किसी दिन। मुझे डांस में बहुत इंटरेस्ट था, मैं 3 साल की थी तब से मैं कथक सीख रही हूँ। तो स्कूल में भी मैं बहुत हिस्सा लेती थी, बहुत ट्रॉफीज जीते हैं स्कूल के लिए डांस कॉम्पिटिशन में वगैरह। ड्रामेटिक्स में, कल्चरल एक्टिविटीज में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। मेरे जो स्कूल में मेरी सबसे बड़ी बहन है, उसकी फ्रेंड थी, उनके फादर राजश्री में काम करते थे। एक दिन उन्हें राजश्री वालों ने कहा कि जरा अपनी नजर रखना, कोई लड़की है क्या, ऐसा ऐसा रोल है। तो पता नहीं क्यों उन्होंने मेरा नाम सोचा और उन्होंने आके मेरे पेरेंट्स से पूछा कि आपको इंटरेस्ट होगा, क्योंकि ये इतना अच्छा डांस करती है। हम लोगों ने कहा नहीं, मम्मी ने कहा नहीं, हमें इंटरेस्ट नहीं है फिल्मों में वगैरह, क्योंकि ना तो हम किसी को जानते थे, उनको छोड़ के और किसी को जानते नहीं थे जो मूवीज में हो। लेकिन उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया, कहा कि मिलिए राजश्री वालों से, बहुत अच्छे लोग हैं, बिल्कुल अपने जैसे लोग हैं। और जब उनसे मिले तो कहीं कॉन्फिडेंस आया नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं। और स्क्रीन टेस्ट हो गई और पता नहीं वो फिल्म हो गई।
0: वेल, ये इनकी डेब्यू फिल्म थी 1984 की अबोध। उसके बाद तो 80s में इन्होंने तहलका मचा दिया था भाई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना,
3: क्या बना?
2: मुर्गा मुर्गा नबीद वाला मुर्गा,
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो,
5: हाय, ये कॉल बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
6: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
4: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
6: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
4: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
6: हाँ जी,
4: हाँ बोलिए।
6: 33501।
4: अच्छा
6: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
4: हेलो,
6: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
7: हाय।
6: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
7: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है।
6: धोबी से
7: पूछ लीजिए।
6: अच्छा ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
4: हेलो
6: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
8: ये बेल जा रही है।
6: हेलो भैया, हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
4: अरे भाई तो एक बात सुन, ये
6: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501 है सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
4: किससे पूछे जा रहे हैं?
6: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
4: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
6: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
4: मुझे बताना, ये सबको थोड़ी ना, दुनिया में अल्लाह बचाने के लिए थोड़ी ना होता है।
6: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी, टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते।
9: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
4: किसने दिया मेरा नंबर?
9: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
4: अरे मैं खुकड़ू को।
10: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
11: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
12: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
13: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
14: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
13: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
15: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
16: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
13: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155। Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
17: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
18: Tera kya hoga, Kalia?
19: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
18: Ab, mirchi kha.
4: Radio Mirchi, it's hot.
0: Pirani Jeans with Charu, only on

0: ये तो आपको पता होगा कि 80s में माधुरी दीक्षित की कुछ शुरुआती फिल्में कुछ खास चली नहीं थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। फिर जब सुभाष घई ने उनको डिस्कवर किया तो फॉर्मली प्रॉपरली उनको लॉन्च करने का प्लान बनाया। इस बारे में सुनिए एक इंटरव्यू में माधुरी ने क्या शेयर किया था।
1: जब मैंने अबोध की उसके बाद श्योर नहीं थे क्या करना है, मतलब मैं स्टडीज भी करना चाहती हूँ और मैं फिल्में भी करना चाहती हूँ। आवारा बाप में जैसे सेकंड रोल था, मीनाक्षी शेषाद्री वाज द मेन एक्टर, तो 10-15 दिन का काम होता था और फिल्म यूज टू गेट ओवर, तो मैं एक्टिंग भी कर लेती थी और फिर वापस कॉलेज भी जाना शुरू कर देती थी। तो एक बार आवारा बाप के सेट पे मुलाकात हो गई सुभाष जी की, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे कर्मा मैं फिल्म बना रहा हूँ, उसमें एक छोटा सा डांस है आपको करना है, विल यू डू इट? तो मुझे डांस तो बहुत पसंद था, ऐसा यस आई डू इट। तो हमने वो किया, पिक्चराइज किया और तभी सुभाष जी ने मुझे बोला कि आप ये ऐसे फिल्में नहीं करना, कि आई वॉन्ट टू लॉन्च यू अगेन बिकॉज आई थिंक देयर इज पोटेंशियल इन यू, एंड दैट्स हाउ आई गॉट अनदर चांस। आई एम नॉट फ्रॉम अ फिल्म फैमिली सो वी डिडंट नो एनीथिंग एट दैट टाइम, मतलब जो इतने सारे वो एड्स भी आ गए तो मुझे कोई असर नहीं पड़ा उसका भी, मुझे पता ही नहीं था कितनी बड़ी बात थी एट दैट टाइम। आज व्हेन आई लुक बैक आई फील ओ माय गॉड ये हुआ था तभी, तो ऐसा हुआ और यस आई वाज फॉर्चुनेट दैट आई गॉट दीज अपॉर्चुनिटीज एट द राइट टाइम।
0: अच्छा घई साहब के प्लान के साथ गड़बड़ ये हो गई कि इससे पहले कि राम लखन रिलीज होती, विच हैपेंड इन जनवरी 1989, नवंबर 88 में तेजाब रिलीज हो गई और माधुरी ओवरनाइट सेंसेशन बन गई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
4: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
5: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन. Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
9: It's 1:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
10: Tera kya hoga, Kalia?
11: Sardar, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
10: अब मिर्ची खा.
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची.
13: 80s में हिंदी फिल्मों के साथ सबसे बढ़िया चीज क्या हुई? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर. मैं हूँ चारू आपके साथ. सबसे बढ़िया ये चीज हुई कि माधुरी दीक्षित की एंट्री हुई. वैसे तो उनकी डेब्यू फिल्म 1984 में आई थी, लेकिन 1988 में तेजाब के आने से तो सारा मामला ही ढंडलन हो गया ना. अच्छा, माधुरी को कब रियलाइज हुआ कि वो ऐसे ओवरनाइट सेंसेशन बन गई हैं, पॉपुलर हो गई हैं? सुनिए एक बार एक टेलीविजन कॉमेडी शो पर उन्होंने क्या शेयर किया था.
14: मुझे पहली बार रिकग्निशन मिली स्ट्रीट्स पे, जैसे रास्ते पे चलते. तेजाब जब रिलीज हुई थी तब मैं यहाँ नहीं थी, मेरी बहन के शादी के लिए गई थी यूएस में. वापस आई, एयरपोर्ट पे उतरे, हम लोग बाहर आए तो सडनली एक बच्चा बोला, ए वो थे हीरोइन ही हीरोइन ही. तो भाग के आए दोनों. मैंने बोला, अरे मुझे पहचाना? बोलता है, मैडम आप हीरोइन है ना, आप ऑटोग्राफ दीजिए ना. तो मैंने ऑटोग्राफ दिया तो एम से सिग्नेचर किया मैंने. तो दूसरे को बोलता है, देख देख मैं मोहिनी मोहिनी.
13: तो ये बैड ओवर मोहिनी या बैड ओवर माधुरी वाले टाइम का आइकॉनिक गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर. मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची.

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

0: तरह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
4: I enjoy using inefficient and complex software, mama.
5: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
0: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ privacy और protection का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
6: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
7: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
6: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
8: Purani Jeans with Charu. Only on

0: माधुरी दीक्षित ने पता नहीं कितने गानों में राम जी का नाम लिया है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। जैसे कि ओ राम जी बड़ा दुख दीना, या मेरा पिया घर आया ओ राम जी, या खलनायक के गाने में भी वो गाती हैं, मैं कैसी राम की गंगा हूँ, मैं तो बस नाम की गंगा हूँ। क्या ये यूनिवर्स की तरफ से उनके लिए कोई साइन था कि उनकी लाइफ में भी राम नाम का कोई आने वाला है? सुनिए एक इंटरव्यू में माधुरी ने क्या कहा था।
1: बहुत चिढ़ाया जाता है तो लोग कहते हैं आपने अपने गानों में इतना राम जी राम जी राम जी किया है कि आपको हस्बैंड भी राम ही मिले उनका नाम भी राम ही है, तो इसलिए लोग टीज करते हैं मुझे।
0: भाई हम तो यही कहेंगे वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई वैसे ये जोड़ी किसने बनाई थी, सुनिए माधुरी ने एक बार क्या शेयर किया था।
1: मेरे ब्रदर ने बहुत ही खुफिया किस्म से हमारी मीटिंग करवाई थी, तो मुझे भी पता नहीं था और मुझे लगता नहीं कि उनके भी फैमिली को पता नहीं था। ऐसे ही पार्टी घर में की सबको बुला लिया और वहाँ मेरी मुलाकात हुई
0: और ये मुलाकात जीवन भर का साथ बन गई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। You can catch me on Instagram @rj.charu, rj.charu, इस नाम से मिल जाऊंगी। सुनते रहिए मिर्ची।

0: जी थी।
1: तो भैये नाच गाना और खाना किसी भी सेलिब्रेशन के तंबू के लिए ये दो, नहीं राइमिंग वर्ड नहीं बोल सकती, ज्यादा हो जाएगा, ये दो सपोर्ट तो चाहिए रहते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और जिस सेलिब्रेशन की आज हम बात करेंगे वो है हमारे ग्रोइंग अप ईयर्स का बर्थडे सेलिब्रेशन, जो बहुत बड़ी डील होती थी। और सबसे बड़ी डील ये कि सिविल ड्रेस पहन के स्कूल जाना होता था, वो ड्रेस जो हमने घर वालों को इमोशनल ब्लैकमेल करके या बहुत सारे टैंट्रम्स थ्रो करके हथियाई होती थी, या कई बार नई भी मिलती थी नई ड्रेस, आपको पुरानी शादी फंक्शन त्योहार वाली ड्रेस ही पहना दी जाती थी, लेकिन बड़ी किक मिलती थी ये सोच के कि वो पहन के हम स्कूल जाएंगे, क्योंकि स्कूल वालों को बताना होता था कि हम सिर्फ स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं सिविल ड्रेस में भी ठा लगते हैं। और वो सारी प्लानिंग करना कि जो टॉफीज के पैकेट बांटने हैं उनमें कौन कौन सी टॉफीज जाएंगी, पॉपिंस, एक्लेयर्स, मेलेडी, किसमी, मैंगो बाइट, या घर वाले ज्यादा मेहरबान हो जाएं तो रबर शार्पनर पेंसिल भी देते थे। और पूरी क्लास वेट करती थी कि कब कद्दू कटेगा और सब में बटेगा। अच्छा, फिर अलग अलग क्लासेस में जाते थे अलग अलग टीचर्स को स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि आपके क्रश की क्लास में भी जाएंगे आप, और अगर आपके बर्थडे वाले दिन क्रश एब्सेंट हो जाता था तो बड़ा दिल टूट जाता था कि हाय उसने हमें सिविल ड्रेस में देखा ही नहीं। Those were the days, जब बर्थडे वाले दिन स्कूल में अपनी झांकी होती थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नबीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो,
4: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो, और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज दिस,
3: कौन बोल रहा है
4: ये, और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये,
3: क्या मजाक चल रही है,
4: क्या मजाक चल रहा है। सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कॉमेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
5: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बढ़े। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कुकड़ू।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्केटवे आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यु आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 7323578200। जय गुरुदेव।
10: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
11: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
12: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
0: Purani Jeans with Charu. Only

ग्रोइंग अप ईयर्स का बर्थडे सेलिब्रेशन और उस सेलिब्रेशन का डेकोरेशन। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। हर घरेलू बर्थडे पार्टी में यूजुअली एक सा डेकोरेशन होता था, गुब्बारे जिनको फुला फुला के मुंह दुख जाता था, और सबसे ज्यादा मेहनत लगती थी उस गुब्बारे में जिसको फुला के टॉफियां भर के सेंटर में लटकाना होता था और बाद में फोड़ना भी होता था। और याद है वो स्ट्रीमर्स या कलरफुल रिबन्स जिनको दीवार पे सेलो टेप से चिपका के हैप्पी बर्थडे लिखा जाता था। भाई बड़ी मेहनत का काम होता था, कई बार टेढ़ा मेढ़ा सा हैप्पी बर्थडे लिखा जाता था, कई बार तो त्योहारों के बचे डेकोरेशन पीसेस भी लगा दिए जाते थे। और बर्थडे वेन्यू डेकोरेशन जो यूजुअली घर का ड्रॉइंग रूम होता था, उसके साथ साथ अपना डेकोरेशन भी होता था। वो ड्रेस पहनी जाती थी जो हमने बड़े टैंट्रम्स थ्रो करके, घर वालों को इमोशनल ब्लैकमेल करके नई खरीदी होती थी। कई बार किसी फेस्टिवल, ब्याह, शादी फंक्शन की पुरानी ड्रेस भी पहना दी जाती थी। मुझे याद है मैंने एक बार अपने बर्थडे पर लहंगा भी पहना था। और सबसे इम्पोर्टेंट होती थी वो कोन शेप वाली हैप्पी बर्थडे लिखी हुई टोपी, जिसका पतला सा इलास्टिक कई बार थुड़क करके टूट जाता था तो उसको गांठ बांध के जोड़ लिया जाता था। एक नंबर के जोकर लगते थे उसको पहन के, और हमको ऐसा लगता था पता नहीं क्या राजा बाबू लग रहे हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
4: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
3: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
5: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
6: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
7: ओक ट्री रोड लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च इस्तुन्नारा कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर.
8: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स, GIA सॉलिटेयर्स, नेकलेसेस, रिंग्स, मरियू स्टनिंग पेंडेंट्स. कृष्णा ज्वेलर्स, ओक ट्री रोड, इसलिन.
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
9: अब मिर्ची खा.
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

ग्रोइंग अप ईयर्स के बर्थडे सेलिब्रेशन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये वो चीज है जिसके लिए पूरा झमेला पूरा सेलिब्रेशन किया जाता था, बर्थडे गिफ्ट्स। हाँ, बर्थडे में आप गिफ्ट नहीं लाए तो बर्थडे में क्यों आए? मुझे याद है बचपन में ना हमारे पड़ोस में एक बच्चा होता था जो अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में लिटरली घर के एंट्रेंस पे खड़ा होता था ये देखने के लिए कि कौन गिफ्ट ला रहा है कौन नहीं ला रहा है। और अगर किसी के हाथ में गिफ्ट नहीं होता था ना तो उसको साफ साफ बोलता था कि पहले गिफ्ट लेके आ तभी खाने को मिलेगा। और याद है बर्थडे में उठा के कुछ भी गिफ्ट कर दिया जाता था, फूलदान, पेन, डायरी, टी सेट, वाटर बॉटल, टिफिन बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, मुझे तो एक बार तौलिए भी गिफ्ट मिले थे। और याद है इन गिफ्ट्स को हम यूजुअली काइट पेपर से रैप करते थे, तब इतनी फैंसी पैकिंग थोड़ी ना होती थी, कई बार अखबार में लपेट के भी दे दिए जाते थे, कई बार तो गिफ्ट में शगुन स्टाइल कैश भी दे दिया जाता था। और जिसका बर्थडे होता था वो गिफ्ट्स की वेट करता था, जो बर्थडे पार्टी में आते थे वो रिटर्न गिफ्ट की। और बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता था जब कोई छोटा सा रिटर्न गिफ्ट मिलता था, कोई एक्लेयर्स या एक टॉफी। और सबसे बढ़िया चीज, सारे बच्चों के जाने के बाद उन सारे गिफ्ट्स को खोलना। हाय, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
3: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: रहता है।
1: ग्रोइंग अप ईयर्स के बर्थडे सेलिब्रेशन की सबसे खूबसूरत चीज ग्रीटिंग कार्ड्स। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आज भी ग्रीटिंग कार्ड दिया जाता है, लेकिन ऐसे मस्त नहीं होता है। उस टाइम पे तो जरूरी होता था, और सबसे खास बात हाथ से बना के दिया जाता था। कई बार बजट होता था तो आप आर्चीज गैलरी वगैरह से भी ग्रीटिंग कार्ड ले आते थे और उसपे कुछ सुंदर सुंदर सा लिख देते थे बर्थडे बॉय बर्थडे गर्ल के लिए। और याद है वो म्यूजिकल ग्रीटिंग कार्ड्स भी आते थे जिनको खोलते से ही टा टा टा टा टा टा बजने लग जाता था। और अक्सर ग्रीटिंग कार्ड को गिफ्ट के ऊपर पेस्ट किया जाता था सेलो टेप से। कई बार ज्यादा प्राइवेट होता था तो अलग से भी दे दिया जाता था। लेकिन वो जो हाथ से बने हुए ग्रीटिंग कार्ड्स होते थे ना, फिर चाहे उनमें कितनी भी गंदी ड्राइंग की हो, कितनी भी गंदी हैंड राइटिंग हो, उनकी अलग ही बात होती थी। वो ऐसे लगता था कि किसी ने आपके लिए जेन्युइन कोई एफर्ट किया है। हाँ, आज की डेट में जिफ्स, स्टिकर्स, व्हाट्सएप मैसेजेस या AIC कोई बढ़िया सा मैसेज निकाल के किसी को भेज देना वो भी अच्छा है, पर वो हाथ से बना हुआ ग्रीटिंग कार्ड, उफ उफ उफ। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए।

सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनो, अरे मदगन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघोबा ओ दोंडीबा आई का ओ जरनल सिंह, ओ जरनल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

ग्रोइंग अप ईयर्स की बर्थडे सेलिब्रेशन की बड़ी भारी जरूरी चीज बर्थडे केक। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और मैं अपने घर में बर्थडे सेलिब्रेशंस याद करूँ तो शुरुआत में केक घर पे ही बनता था। वो एक गोल मटोल सा ओवन होता था, सी थ्रू टाइप का, जिसमें ऐसे केक दिखता था फूलता हुआ, और उस केक को फिर टूटी फ्रूटी चेरीज या जेम्स जो होती थी उनसे डेकोरेट किया जाता था। उसकी आइसिंग भी घर पे ही बनती थी, वो शुगरी चीनी चीनी सी होती थी। और कैंडल्स, वो नंबर वाली कैंडल्स तो बाद में आई थी, और वो महंगी भी आती थी तो कभी आती थी कभी नहीं आती थी। जो सिंपल पतली वाली कैंडल्स होती थी उन्हीं से काम चला लिया जाता था। कई बार स्पाइरल कैंडल्स भी होती थी। एक बार तो मुझे याद है हमारे घर में किसी बर्थडे सेलिब्रेशन में केक पर दिवाली की जो बची हुई कैंडल्स थी ना वही लगा दी गई थी और केक काटने के लिए चाकू, जो सब्जी काटने वाला चाकू होता था किचन का, उसी पे रिबन बांध दिया जाता था। फिर बाद में बाजार वाले केक्स आ गए, उसमें भी लिमिटेड फ्लेवर्स होते थे, चॉकलेट, बटरस्कॉच, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, ब्लैक फॉरेस्ट। केक यूज्ड टू बी अ सच अ बिग डील। केक कटिंग कितना इंपॉर्टेंट इवेंट वैसे आज भी होता है, और कितना जरूरी हो जाता था कि केक कटिंग से पहले बर्थडे पार्टी में पहुंचना है, नहीं तो फिर केक खत्म हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं, गिफ्ट के पैसे कैसे वसूल होंगे। ग्रोइंग अप ईयर्स का बर्थडे सेलिब्रेशन, हाय सदके वारी जाऊं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Mirchi.
1: Buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virpa, la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो
3: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
2: हाँ जी बोलिए।
3: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
2: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
4: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
2: कौन बोल रही है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
2: स्कीम मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही?
5: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
2: हेलो कौन बोल रहा है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
2: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
4: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
2: हेलो मैडम।
3: हाँ जी सर, रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, रमेश बोल रहा हूँ।
2: कौन बोल रहा?
3: रमेश बोल रहा हूँ सर। से
2: अभी कोई और बोल रही थी।
3: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
2: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
6: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
2: कौन बोल रहा है?
3: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
2: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
7: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
2: कौन बोल रहा है भैया?
3: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
2: कभी किसी की आवाज आ रही है, कभी किसी की आवाज आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
8: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
3: हम सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या कौन बोल रहा है यार? मैं बोल रहा हूँ आपसे, रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आप सर फोन मत काटिएगा।
9: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, अब मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
10: थैंक यू
11: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
12: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
13: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
14: Pyari brides, kya dhoond rahi ho apna dream wedding lehenga? To aa jaiye Miss India Bridal Store.
12: Miss India laaye hai latest bridal lehengas, exclusive reception aur party wear dresses and grooms ki sherwanis.
14: Visit us at 79 Middlesex Avenue, Islip.
15: Jai Gurudev, Gayatri Chetna Center, Piscataway ki or se, aap aur aapke parivar ko Guru Purnima evam Rudrabhishek Mahotsav mein snehpoorn aamantran. Shanivar 1 August ko subah 10 baje Shivji Rudrabhishek aur shaam 5 baje Virat Deep Yagya. रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 732-357-8200। जय गुरुदेव।
16: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत है पर बच्चन एक ही होता है।
17: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
16: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
18: एक ही होता है।
16: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
19: Purani Jeans with Charu, only

कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे।

0: कहता रहे हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें चाहे कोई मुझे जंगली कहे।
1: ग्रोइंग अप ईयर्स के बर्थडे सेलिब्रेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता था फोटोज क्लिक करना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ग्रोइंग अप ईयर्स में ये अलग एक्सपीरियंस इसलिए भी होता था क्योंकि फोटोज खींचने के लिए एक अलग कैमरा होता था जिसमें हम 24 या 36 फोटोज वाली रील डलवाते थे और कोई भी फोटो वेस्ट नहीं की जाती थी। बहुत सोच समझ के फोटोज क्लिक की जाती थी क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ फोटोज ही खींच सकते थे और एक फोटो तो मैंडेटरी होती थी बर्थडे पे, बर्थडे गर्ल या बर्थडे बॉय की वो फोटो जिसमें उसने वो कोन वाली टोपी पहनी होती थी जिसपे सामने हैप्पी बर्थडे लिखा होता था। क्या एक नंबर के जोकर लगते थे वो पहन के। खैर यूजुअली ये फोटोज घर का कोई बड़ा रिस्पॉन्सिबल पर्सन वो क्लिक करता था और फिर वेट होता था कि ये रील्स को कब फोटोज की दुकान पे ले जाया जाएगा, इन्हें डेवलप कराया जाएगा, उन्हें एल्बम में लगाया जाएगा और जब तक अगला बर्थडे नहीं आएगा उसी एल्बम को बार बार देखा जाएगा। हाय वो डेज जब फोटोज एक्चुअली मोमेंट्स को कैप्चर करने के लिए, यादों को सहेज के रखने के लिए क्लिक की जाती थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Oh no!
3: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
1: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
1: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन. Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
4: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.

गोल माल, चकोर माल, तिकोना माल, हर तरह का माल फिट हो जाता था वो छोटी सी प्लेट में। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और ग्रोइंग अप इयर्स के बर्थडे सेलिब्रेशन की हम बातें कर रहे हैं, और उस प्लेट की बात कर रही हूँ मैं जिसमें स्नैक्स सर्व किए जाते थे। पूरी दुनिया सिमट जाती थी उस प्लेट में। समोसा, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन का रस समोसे के नीचे घुसा हुआ, समोसे की चटनी गुलाब जामुन से लिपटी हुई, केक या पेस्ट्री की क्रीम में रसे मिसे आलू चिप्स। और ऐसा भी होता था कि खा हम अपनी प्लेट से रहे होते थे लेकिन नजर दूसरे की प्लेट पे होती थी कि कहीं कोई ऐसी आइटम तो नहीं है जो हमारी प्लेट में नहीं आई, उसकी प्लेट में है। और अगर ऐसी कोई आइटम होती भी थी तो ही करते हुए आंटी के पास जाते थे और बोलते थे कि भाई बाकी सब तो मिल गया, एक वो नहीं हमको मिला, वो भी प्लीज दे दो। और कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें तो कोला, लाइम, ऑरेंज, ये फ्लेवर्स तो होते थे। कई बार रसना रूह अफजा भी टिका दिया जाता था, चाय कॉफी भी पिलाई जाती थी कई बार। हाय, उस कागज की प्लेट के आइटम्स का जो स्वाद होता था ना, वो स्वाद लाइफ में कहीं और है नहीं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
4: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
5: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
6: Tera kya hoga, Kalia?
7: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
6: Ab, mirchi kha.
8: Radio Mirchi, it's hot.

दोस्तों, कभी नोटिस किया है, फ्राइडे का नाम ही ना एक छोटी सी खुशी दे देता है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज मॉर्निंग से ही ना एनजे रोड्स पर एक अलग सी एनर्जी थी। लोग ट्रैफिक में भी स्माइल कर रहे थे, कॉफी शॉप्स में बरिस्टा बिना पूछे एक्स्ट्रा फोम दे रही थी, और ऑफिस में वो फेमिलियर सेंटेंस सुनाई दिया, लेट्स कीप इट लाइट टूडे। आहा, फ्राइडे का चाम ही ऐसा होता है दोस्तों, इट डजेंट प्रोमिस अ ब्रेक बट इट प्रोमिस अ होप ऑफ अ ब्रेक। और आज का दिन ना एक रिमाइंडर होता है कि हम सब ना थोड़ा सा ब्रीथ कर सकते हैं खुद के लिए। और वीकेंड आने से पहले का ये फ्राइडे का जो मैजिक है ना, वही तो लाइफ को थोड़ा सा और फिल्मी बना देता है। तो चलिए इस मैजिक को एंजॉय करते हैं विद फ्राइडे स्पेशल सॉन्ग्स। वैसे आप ही मुझे बता सकते हो विच इज योर फेवरेट फ्राइडे स्पेशल सॉन्ग। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए इस खूबसूरत शाम को सेलिब्रेट करने के लिए राइट हियर ऑन मिर्ची ये अगला गाना।

0: Energy.
1: Escabana, escabana, sacabana.
2: Rabana.
1: Burga, burga. La vieja la burga.
2: Mirchi, burga.
3: Hello.
4: Hi, ye call बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है। हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
5: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
3: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
5: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
3: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
5: हाँ जी,
3: हाँ बोलिए।
5: 33501।
3: अच्छा
5: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए, जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
3: हेलो,
5: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
6: हाय।
5: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
6: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए, क्योंकि उसके पास भी है।
5: धोबी से
6: पूछ लीजिए।
5: अच्छा, ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
3: हेलो
5: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
7: ये बेल जा रही है।
5: हेलो भैया। हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
3: अरे भाई तो एक बात सुन, ये
5: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501 है।
3: हेलो
5: सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
3: किस से पूछे जा रहे हैं?
5: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
3: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
5: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
3: सिर्फ मुझे बताना है, सबको थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह थोड़ी ना आता है।
5: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते
7: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
3: किसने दिया मेरा नंबर?
7: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
3: अरे मैं कुकड़ू को।
8: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
9: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
10: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
11: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
12: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
13: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
12: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
13: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
12: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
14: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
15: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
16: Are you a South Asian parent of a child with disabilities or special needs and feel isolated and helpless? Reach out to SKN Foundation's SCOPE program for their parent support group, educational empowerment programs, IEP consultations, job skills training for teens, and inclusive events year-round.

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और आज का हंगामा आ रहा है दिल धड़कना दो मूवी के गल्ला गुड़िया गानों से। वैसे यार ये गाना स्क्रीन पर तो फुल ऑन फैमिली मस्ती लगता है, मतलब सब नाच रहे हैं, कैमरा घूम रहा है, एनर्जी नॉन स्टॉप है। पर पर्दे के पीछे असली कमाल ये था कि डायरेक्टर जोया अख्तर ने इस गाने को एक टेक में शूट किया है। जी हाँ, इसके लिए हर जो एक मूवमेंट था वो प्लान था, हर कैमरा टर्न प्लान था, हर एक्टर की एंट्री एग्जिट और कोरियोग्राफी डिटेल में रिहर्स की गई थी। तो कैमरा जब चालू हुआ यानी रोलिंग जब चालू हुई, उसके बाद पूरा गाना खत्म होने के बाद ही वो रोलिंग बंद की गई थी। और जोया अख्तर ने खुद कहा था कि इतनी प्लानिंग और मैनेजमेंट हुई थी तब जाके ये पॉसिबल हुआ है। तो सोचिए दोस्तों, हम तो कभी कभी ऑफिस में अपने बॉस को अगर छुट्टी मांगनी है तो एक स्ट्रेट वॉइस नोट भी एक टेक में रिकॉर्ड करके नहीं भेज पाते, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा गाना, पूरा का पूरा कास्ट, मूविंग कैमरा, डांस, टाइमिंग, एक्सप्रेशन, सब कुछ एकदम सिंक में चल रहा था। मतलब यार स्क्रीन पर जो फुल चिल फैमिली वाइब लग रही थी ना, उसके पीछे स्टॉप वॉच लेवल डिसिप्लिन और टीम वर्क था। तो ये बात तो बहुत जाहिर सी है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी सबसे नेचुरल दिखने वाली चीज उसके पीछे सबसे ज्यादा प्लानिंग होती है। तो दोस्तों आप भी मुझे बताना कैसा लगा आपको ये पर्दे के पीछे का किस्सा, और ऐसे ही गानों के पर्दे के पीछे के किस्से जानने के लिए मुझे जरूर बताना विच इज योर फेवरेट सॉन्ग। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और फिलहाल ये वन टेक का कोरियोग्राफ किया हुआ गाना सुनते हैं, गल्ला गुड़िया फ्रॉम दिल धड़कने दो, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: Tera kya hoga, Kalia?
8: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
7: Ab, mirchi kha.
9: Radio Mirchi, it's hot.

0: It's 4:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shandar. Let's do not donkey, have a funky time.
2: बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है ओमकारा मूवी का बीड़ी जलाई ले इस गाने से। वैसे तो यार स्क्रीन पर बिपाशा बासु का फुल देसी स्क्वैग और रस्टिक डांस और एकदम रॉ एनर्जी तो हमें सबको बहुत पसंद आई थी, पर पर्दे के पीछे विशाल भरद्वाज और कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था ऑथेंटिसिटी का, क्योंकि सेट को ना इंटेंशनली ग्लैमराइज नहीं किया गया था बल्कि धूल मिट्टी यानी रियल यूपी फील देने के लिए बहुत सारे ऐसे एडजस्टमेंट्स किए गए थे कि यार लगे कि ये यूपी का सेट है, मतलब मजा मस्ती होने वाला है। तो सोचिए दोस्तों, ये गाना पॉलिश नहीं, पर्पसफुली इम्परफेक्ट बनाया गया था ताकि रियल लगे। तो मतलब बात तो बहुत सिंपल है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी परफेक्शन नहीं, ऑथेंटिसिटी हिट हो जाती है। तो ऐसे ही पर्दे के पीछे के किस्सों के लिए मुझे जरूर बताइए कि ऐसा कौन सा गाना है जिसके पर्दे के पीछे के किस्से आपको जानने। टेल मी और फिलहाल सुनते हैं सुनिधि चौहान की आवाज में बीड़ी जलाई ले फ्रॉम द मूवी ओमकारा, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of khandani. From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of khandani chef's recipes.

0: मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और आज हंगामा आ रहा है एक ग्रैंड हैवी इमोशन सॉन्ग के पीछे से। जी हां, हम सबका फेवरेट डोला रे डोला। यार जब आप डोला रे डोला देखते हो तो लगता है कि बस ग्रेस, रिदम और शान ही शान है, क्योंकि माधुरी और ऐश्वर्या का डांस और प्योर पोइट्री है। पर पर्दे के पीछे एक सीन फुल पावर कंजप्शन मोड में था। जी हाँ, ये गाना इतने बड़े सेट पर शूट हुआ था, इतनी ज़्यादा लाइटिंग और इतने जनरेटर्स के साथ कि पूरी यूनिट मोस्टली रात को ही काम करती थी। और लाइट्स इतनी हैवी थी कि मुंबई के इवेंट वालों को जनरेटर्स मिलना मुश्किल हो गया था, क्योंकि देवदास के सेट ने ऑलमोस्ट सब कुछ बुक कर लिया था। मतलब देवदास का जो दर्द था ना, वो स्क्रीन पे तो चल ही रहा था, और जो भी शादी वाले लोग हैं उनका दर्द रियल ग्राउंड में दिख रहा था, क्योंकि जनरेटर्स ही नहीं मिल रहे थे। तो समझे दोस्तों, बॉलीवुड में ना जब इमोशंस बड़े होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ब्लॉकबस्टर लेवल का होता है। ऐसे ही पर्दे के पीछे की फिल्मी हंगामे चाहिए तो जरूर बताना। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और फिलहाल सुनते ही अगला हॉट सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स

0: इस गाने को गाया है फहीम अब्दुल्ला ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म चांद मेरा दिल से सुनते रहिए चांद मेरा दिल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mir-

0: Mirchi.
1: Iscabana, puscabana, sacabana.
2: Gambana.
1: Murga, murga. La virgua, la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello?
4: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो। और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज दिस।
3: कौन बोल रहा है
4: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
3: क्या मजाक चल रहा है?
4: सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कोवेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
5: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बने। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कु।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
10: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
11: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
11: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
10: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन। Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
12: Listener MI, back to back gana sunega.
13: Back to back gana sunega.
14: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: एनीटाइम। शुक्र करो शुक्रवार आ चुका है दोस्तों, शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी। और जी हाँ, बदलता मौसम, बदलते वीकेंड के प्लान्स और बदलते मार्केट कंडीशंस, ऐसे में फर्स्ट टाइम होम बायर्स, सेकंड टाइम होम बायर्स को क्या करना चाहिए ऐसे बदलते हालातों में, क्योंकि यार मॉर्गेज रेट्स भी तो बदल रहे हैं। तो वही सारी डिटेल्स हमें देने आए हैं मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लाइन मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।
1: शुक्र करो शुक्रवार है भाई और बहनों, मैं हूं आपका दोस्त बीश फ्रॉम लायन मॉर्गेज। गुड न्यूज, वेदर इज वार्मिंग अप एंड द यूएस मार्केट्स टंबल एज ट्रेजरी यील्ड्स राइज ऑन इन्फ्लेशन फियर्स एंड मॉर्गेज रेट्स ट्रिगर अप। मॉर्गेज रेट्स कंटिन्यू देयर स्टीप क्लाइम दिस वीक एंड फोर्सिंग मोर वुड बी बायर्स बैक टू द साइडलाइंस। द शार्प अपटेक इन रेट्स हैज स्क्वीज्ड होम बायर्स डिमांड, ड्राइविंग इन्फ्लेशन वेरी होम बायर्स टू लोअर देयर बजट्स और अबैंडन देयर परचेसिंग प्लान्स। Well, friends, it's a good time for buyers in the market to negotiate sales before rates further erode their buying power. There are still few homes for sale. All combined, these things are dampening the market. Well, friends, advice is free. Pre-approval is free. Buying your dream home, call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Buying your dream home, Lion Mortgage, 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate 6.25%, 20-year fixed mortgage rate 6.125%, 15-year fixed mortgage rate 5.625%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. It is lionmtg.com. Listeners, remember, with interest rates on rise, credit card payments, car payments, and payments on home equity loans will go up. And during this time, the best thing you can do is debt consolidation. If you have equity on your home, home mortgage rates are the cheapest. Remember, if you are closing debt consolidation by refinancing, we can offer you zero closing cost refinance option. So once again, friends, buying your dream home or refinancing, don't hesitate to call Lion Mortgage today at 732-339-3155, 732-339-3155. With that, drive safe, everybody. Have a wonderful weekend. Thank you very much. Bye-bye.
2: This mortgage update is brought to you by Lion Mortgage.

0: 5:30 PM. मिर्ची टाइम चेक ब्रॉट यू बाय RK Jewels. RK Jewels. ज्वेलरी में सिर्फ एक ही नाम RK Jewels. बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.
1: शाम शानदार. Let's do not donkey have a funky time.
2: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि. और ऐसे कैसे हो सकता है कि वीकेंड का प्लान बने, स्क्रीन टाइम का प्लान बने, और वो भी बिना स्नैक के. नो. और इसीलिए दीप चिप्स लाए हैं आपका मूड सेट करने के लिए. अलग अलग फ्लेवर्स के, अलग अलग टाइप के चिप्स, चाहे फिर वो ब्लैक पेपर वाला थोड़ा बोल्ड, रेड चिली वाला थोड़ा फिल्मी, या नेचुरल एकदम सीधा साधा क्रंच. तो यार, एक बोरिंग से स्क्रीन टाइम को बनाओ फुल ऑन धमाकेदार. लाइट्स ऑफ, नेटफ्लिक्स ऑन, और दीप चिप्स का पैकेट क्रंच. ये सिर्फ स्नैक नहीं है, ये यार वीकेंड वाइब्स का रिमोट कंट्रोल है. तो अगर आपने ट्राई किया तो बताना कैसा लगा, और नहीं किया है तो आज ही ट्राई करना दीप चिप्स फ्लेवर का एटीट्यूड. क्योंकि दीप खाओ तो जानो, और तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।

यूज किए थे। डिड गेरो डू आयरिश इन्फ्लुएंसेस के साथ में इस ट्रायो का यूथफुल लिरिक्स ने इस एल्बम को सुपर डुपर हिट बना दिया था। और इतना ही नहीं, बीबीसी एशिया की टॉप 40 में इंक्लूड किया था एज अ ट्रेंड सेटर एल्बम। और मुझे तो लगता है कि अगर कंटेम्प्रेरी वाइब आज भी चाहिए ना, तो ये एल्बम कटिंग एज था, विच वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। 2001 में आया था, लेकिन 2025 में भी आज भी इसके गानों पर ट्यून इन कर सकते हो। तो आप भी मुझे बताइए विच इज योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम दिल चाहता है एल्बम। टेल मी ऑन इंस्टा एट आर जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और कहीं ना जाइए, क्योंकि इस एल्बम के गानों के बारे में बहुत ही खास बातें करने वाले हैं हम आज राइट हियर ऑन द शो। तो कहीं ना जाइए, बने रहिए मेरे साथ राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और चलिए ले चलते हैं आपको 2001 में जब दिल चाहता है रिलीज हुई थी। और यार वो सिर्फ फरहान अख्तर की डायरेक्टोरियल डेब्यू ही नहीं थी, लेकिन एक ऐसा एल्बम बन गया था, एक ऐसा साउंड ट्रैक बन गया था जो टाइमलेस था। और शंकर एहसान लॉय का ये जो साउंड ट्रैक था उसने धमाका किया था, स्पेसिफिकली विद द टाइटल ट्रैक दिल चाहता है। क्योंकि यार दिल चाहता है सुनते ही ना दिमाग में गोवा के क्लिफ्स, रोड ट्रिप्स और केयर फ्री दोस्ती ना फ्लैश हो जाती है। और ये सॉन्ग वैसे तो सिडनी के बूंदी बीच और चपोरा फैट गोवा, इन दोनों लोकेशंस पे शूट हुआ था, लेकिन ये इकलौता गाना ऐसा है जिसके वजह से गोवा टूरिज्म बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हुआ था। क्योंकि इतने सारे दोस्तों ने प्लान कर लिए थे कि यार चलो गोवा चलते हैं। हाँ, कुछ प्लान सक्सेस हुए थे, कुछ प्लान फेल हुए थे, लेकिन प्लान तो सब ने बनाए थे। तो जी हाँ, ये सिर्फ एक गाना नहीं, लाइफ का मिशन स्टेटमेंट बन चुका था, लिव फ्री लव रियल एंड लव लाउडर। तो चलिए आपके लिए प्ले करते हैं दिल चाहता है, लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो विच इज दैट वन फेवरेट सॉन्ग ऑफ दिस एल्बम ऑफ योर्स। टेल मी ऑन इंस्टा आर जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए गोवा की यादें ताज़ा करते हैं विद दिस दिल चाहता है, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iscaba la puscaba la sacaba la.
1: ¡Cámbala!
0: ¡Murga, murga! ¡La viva la murga!
1: ¡Mirchi, murga!
2: ¿Aló?
3: Sir, very good evening, man. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
2: हाँ जी बोलिए।
3: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
2: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ। तो हिडन चार्जेस?
4: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
2: कौन बोल रही है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
2: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
5: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
2: हेलो कौन बोल रहा है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ, मैं इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
2: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
4: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
2: हेलो मैडम।
3: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
2: कौन बोल रहा
3: है? रमेश बोल रहा हूँ सर। से
2: अभी कोई और बोल रही थी।
3: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
2: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
6: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
2: कौन बोल रहा है?
3: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
2: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
7: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
2: कौन बोल रहा है भैया?
3: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
2: कभी किसी की आवाज आ रही है, कभी किसी की आवाज आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
8: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
3: आज सबका दिमाग खराब हो गया, आपने खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार। आप सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या
2: कोई बोल रहा है?
3: कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, आप सर फोन मत काटिएगा।
9: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
10: थैंक यू।
11: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
12: This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style.
13: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
14: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
15: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए Lion Mortgage. The king of mortgage industry.
16: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
14: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
17: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
18: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
19: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
18: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
19: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
18: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
9: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका फैशनेबल फ्राइडे में। जी हाँ दोस्तों, गोल्डन आवर शुरू हो चुका है और गोल्डन आवर की खास बात यही होती है कि हमारे साथ जुड़ते हैं एक गोल्ड एक्सपर्ट बॉबी बंसल जी फ्रॉम राज ज्वेल्स इन आवर स्पेशल सीरीज गोल्ड डिकोडर सीरीज, जहाँ होती है थोड़ी चमक थोड़ी समझ। तो चलिए स्वागत करते हैं बॉबी जी का। नमस्ते बॉबी जी, वेलकम टू फैशनेबल फ्राइडे।
1: नमस्कार, हैप्पी इवनिंग टू यू सिद्धि जी, एंड आई हैप्पी फैशनेबल फ्राइडे टू एवरीवन। सिद्धि जी, टू स्टार्ट विद द गोल्ड प्राइसेस, गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,545, $4,545 पर ट्राय उसके साथ। आज मार्केट ने सडनली एक ह्यूज डिप ली है। गोल्ड वॉज ट्रेडिंग अराउंड $4,700 टिल यस्टरडे। टुडे गोल्ड trading at $4,545 per troy ounce and markets are still operational. तो मुझे लगता है $4,550 के करीब आज गोल्ड के प्राइसेस क्लोज होंगे, जो $150 पर ट्राई आउंस पिछले वीक से कम रहेंगे। सो आने वाले इस खूबसूरत से वीकेंड पे गोल्ड प्राइस 0% जीरो डाउन पेमेंट के साथ 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी घर ले जाते हुए बिना किसी इंटरेस्ट बिना किसी हिडन फी के गोल्ड का प्राइस लॉक करें। जी हाँ, 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, जीआई सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड, आप राज ज्वेल्स की स्पेशल फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। आज डिप करे हुए गोल्ड प्राइस और जो स्पेशली गोल्ड के बार्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट गोल्ड बार्स, ऑल्दो देयर इज नो फाइनेंसिंग, बट $150 पर ट्राई औंस गोल्ड का प्राइस डिप हुआ है। 1 औंस 100 ग्राम्स किलो बार्स, पैम सर्टिफाइड सिल्वर या गोल्ड के बार्स, जो इन्वेस्टमेंट बार्स हैं उसके ऊपर सेल्स टैक्स एग्जेम्प्टेड है न्यू जर्सी स्टेट में ओवर परचेज ऑफ $1,000 और मोर, नो फाइनेंसिंग ऑप्शन ऑन गोल्ड बार्स, दीज आर इन्वेस्टमेंट बार्स, बट वो आपके लिए राज ज्वेल्स पर अवेलेबल है एब्सोल्युटली लोएस्ट प्राइस प्रीमियम के साथ एंड एन एग्जेम्प्शन ऑफ सेल टैक्स ऑन इन्वेस्टमेंट बार्स। सिद्धि जी, मैं तैयार हूँ आपके खूबसूरत सवाल के लिए।
0: पहले तो बॉबी जी थैंक यू सो मच, ये चीज बहुत ही खास है कि ज्वेलरी में अगर फाइनेंसिंग ऑप्शन है और गोल्ड बार में फाइनेंसिंग ऑप्शन नहीं है, तो दूसरा बेनिफिट कि न्यू जर्सी में सेल्स टैक्स नहीं है, ये आप हमेशा हमें बताते हो, थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन आज है फैशनेबल फ्राइडे तो मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ है। देखिए, ज्वेलरी में स्टाइल और टाइमलेसनेस का बैलेंस सभी को चाहिए होता है, और जब हम एक ज्वेलरी पीस बनाते हैं तो बहुत बार झिझक इस बात की होती है कि एक बार मैंने इस ज्वेलरी पीस को बना लिया तो लॉन्ग टर्म सोच के चलूं, क्योंकि बार बार मैं चेंज नहीं कर पाऊंगी, फिर वापस वो मेकिंग चार्जेस का कॉस्ट होगा, ऐसे बहुत सारे हेजिटेशंस लोगों के मन में है। तो आज मुझे उसी को डीबंक करना है, डीमिस्टिफाई करना है कि ये सारे हेजिटेशंस लोगों के मन में नहीं होने चाहिए, और ये आपसे बेहतर कौन बताएगा।
1: देखिए, बहुत खूबसूरत सा सवाल है। सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी जनरेशन नई जेंजी के लिए ज्वेलरी खरीद रही है, उनके पुराने गहने सब आउट ऑफ फैशन हो रहे हैं। समय के साथ डिजाइन बदलता है, ट्रेंड बदलता है, और ऑब्वियसली चॉइसेस बदलती है। लेकिन सिद्धि जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मेरा आज एक आपसे काउंटर सवाल है। आपने कभी गाड़ी खरीदी है?
0: जी खरीदी है।
1: आईफोन खरीदा है?
0: जी खरीदा है, अभी भी किडनी में दर्द है।
1: डिजाइनर वॉलेट्स एंड बैग्स खरीदे हैं?
0: जी खरीदे हैं, एक्चुअली मैंने नहीं, वो किसी और से खरीदवाए।
1: लेकिन आप एक बात समझिए, उसकी रिटर्न एक्सचेंज वैल्यू, अगर आप कभी वापस देना चाहें ना, गाड़ी शोरूम से बाहर निकलती है, उसकी 50-70% वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाती है। डिजाइनर बैग्स आपके वॉल क्लॉसेट्स में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी आप अगर जरूरत पड़े बेचना चाहें तो उनके पैसे नहीं मिलते हैं। और अगर आप कपड़ों की, आईफोन की बात की है, ये तो आप ये देखिए, अगर आप अपना $2,000 का आईफोन एक्सचेंज कराने के लिए लेके जाएं तो आपको $500 का क्रेडिट नहीं देते। एक सिर्फ गोल्ड बार्स और गोल्ड ज्वेलरी, चाहे डायमंड ज्वेलरी हो, यही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो समय कितना भी बीत जाए लेकिन उसके अंदर आपका नुकसान बिल्कुल ना के बराबर होता है। सपोज आप 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी लेते हैं तो उसके अंदर गोल्ड का प्राइस होता है प्लस लेबर होती है, तो लेबर 10-15% के करीबन ट्रेंड चलता है, जो एक मिनिमलिस्टिक लेबर होती है। तो अगर आप आज 20 साल बाद कोई अपनी पुरानी ज्वेलरी लेके आते हैं तो आपको पूरे गोल्ड के पैसे मिलते हैं। एक्सचेंज रिटर्न वैल्यू ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि 10-15% आपको लेबर देनी पड़ती है नए डिजाइन के गहने का ले जाने की। तो सिद्धि जी, सवाल बहुत सिंपल था आपका और आंसर भी उतना ही सिंपल है कि एक सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी है, डायमंड ज्वेलरी है, गोल्ड बार्स हैं जिसके अंदर आप रिटर्न एक्सचेंज वैल्यू 20 साल बाद भी नेक्स्ट जनरेशन भी दुनिया के किसी भी हिस्से में जाके, चाहे वो डॉलर हो, पाउंड हो, स्टर्लिंग्स हो या रुपीज हो, आप कभी भी जाके किसी भी शहर में अपने ज्वेलर को बेच सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं और आपका नुकसान ना के बराबर होना है। तो लॉकर के अंदर पड़ी हुई पुरानी ज्वेलरी को निकाले, राज ज्वेल्स के कैरेटोमीटर पर अपना गोल्ड टेस्ट कराएं और नए डिजाइन के गहने, नए फैशन के गहने, ओनली एक्सचेंज ऑफ लेबर चार्ज पे फुल वैल्यू गोल्ड की आपकी वापस मिले। आ जाइए राज ज्वेल्स के साथ, गोल्ड में रिस्पॉन्सिबली इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी इवनिंग टू ऑल।
0: थैंक यू बॉबी जी। तो देखिए दोस्तों, आपने एक्सपर्ट से ही सुन लिया है। फैशनेबल फ्राइडे में अगर आप चाहते हो कि अपना जो पुराना गोल्ड है, पुराने डिजाइन है, उसको रिवैम्प करना है, तो इट्स वेरी इजी। आज ही विजिट कीजिए rajjewels.com और अपने ऑप्शंस चेकआउट कीजिए। और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
5: Oak Tree Road लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च इस्तुन्नर कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर।
6: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स, GIA सॉलिटेयर्स, नेकलेसेस, रिंग्स, मरियू स्टनिंग पेंडेंट्स। कृष्णा ज्वेलर्स, Oak Tree Road, Ezelin।
7: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
8: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
7: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
9: एक ही होता है।
7: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

Doggy Time. एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कोई भी कुछ भी कह ले, अगर कोई भी ऑफिस पार्टी हो और डीजे ने अगर कोई कहे नहीं बजाया तो इज दैट पार्टी इवन अ पार्टी? जी हाँ, कोई कहे कहता रहे फ्रॉम दिल चाहता है आज का बस टॉपिक और आज का बस सॉन्ग, क्योंकि दिल चाहता है 2001 में जो रिलीज हुई थी सुपर डुपर हिट एल्बम थी, विच वॉज कम्पोज बाई शंकर एहसान लॉय। और इसी का एक सुपर डुपर हिट गाना विच इज कोई कहे कहता रहे, जो हर पार्टी की जान बन गया था यार। वैसे तो यार इस सॉन्ग की एनर्जी ऐसी थी कि शूट के दौरान भी पूरा का पूरा क्रू डांस ही कर रहा था, एंड दैट टू ऑफ कैमरा। तब फरहान अख्तर ने बोल दिया था यार, दिस वॉज द ओनली सॉन्ग वेर वी डिंट नीड बैकग्राउंड डांसर, क्योंकि सब खुद ही ग्रूव करने लगे थे। तो यार मूड अगर लो हो या वीकेंड वाइब चाहिए तो ये गाना इज द अल्टीमेट पिक मी अप काइंड ऑफ सॉन्ग। तो आपका भी अगर फेवरेट गाना है ये तो मुझे जरूर बताइए, या फिर ये जो क्लासिक आइकॉनिक एल्बम है विच इज दिल चाहता है, उसका आपका फेवरेट गाना कौन सा है? टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपका मूड अपलिफ्ट करने के लिए ये अगला गाना कोई कहता रहे राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Sham Shanda, let's do not donkey, have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बातें हो रही है 2001 के एल्बम की, दिल चाहता है कि, जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। और एक ऐसे ही गाने की रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम रेशमा हिंगे, जो कि रहती है एडिसन में। यार इनको जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, ये गाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। और तब जब ये गाना अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था, तब यार लगता ही नहीं था कि ये गाना है। मतलब लगता है कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। और प्रीति जिंटा ने एक बहुत ही प्यारा सा मोनोलॉग बोला था इस गाने के जस्ट थोड़ी देर पहले कि यार लव तो लॉजिकली होता है ना, मतलब लव में थोड़ी ना लॉजिक यूज होता है। तो कुछ ऐसा ही कहना है रेशमा हिंगे का भी, वो भी यही एग्री करती है प्रीति जिंटा के जो भी इन गाने के बोल है उनके साथ कि यार लव तो दिल से होता है, लव थोड़ी ना लॉजिकल होता है। तो जी हाँ, चलिए ये गाना बजाते हैं रेशमा जी के लिए राइट हियर ऑन मिर्ची। और दोस्तों आप भी मुझे बता सकते हो विच इज दैट अनदर एल्बम, हिट एल्बम जो यार बहुत पुराना है लेकिन आज भी रेलिवेंट है। टेल मी ऑन इंस्टाट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए दिल चाहता है का, जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, रेशमा जी की रिक्वेस्ट पर राइट योर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: दोस्तों आज का ऑडियंस सिंपल नहीं है, ट्रेलर देखते ही रिव्यू रेडी होता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और इसीलिए आज बॉलीवुड के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है एक्सपेक्टेशन वर्सेस डिलीवरी। मतलब हमने देखा है बिग बजट होने से फिल्म हिट नहीं होने वाली या फिर छोटी फिल्म भी फ्लॉप नहीं होने वाली। ऑडियंस तो अब स्टोरी देखते हैं, ऑथेंटिसिटी फील करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं इज इट वर्थ माई टाइम टू गो टू द थिएटर और नॉट। और इसलिए चाहे कितनी भी बड़ी मूवी हो, कितने भी बड़े नाम हो, कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, सिर्फ बड़ा मत बनाओ, दिल तक पहुंचाओ, यही ऑडियंस का कहना है। तो दोस्तों आप भी बताना कि आपको क्या लगता है बॉलीवुड को अब क्या इंप्रूव करना चाहिए, स्टोरी टेलिंग, म्यूजिक, कास्टिंग या मार्केटिंग। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La vieva la burga. Mirci, burga.
2: Hello.
3: Hi, ye call बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
4: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
2: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
4: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
2: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
4: हाँ जी,
2: हाँ बोलिए।
4: 33501।
2: अच्छा
4: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
2: हेलो,
4: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
5: हाय।
4: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
5: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है।
4: धोबी से
5: पूछ लीजिए।
4: अच्छा ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
2: हेलो
4: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
6: ये बेल जा रही है।
4: हेलो भैया। हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
2: अरे भाई, तो एक बात सुन, ये
4: आपके पास, आपके पास पासवर्ड होगा? 33501। हाँ सर, 33501 है सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
2: किस किस से पूछे जा रहे हैं?
4: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
2: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
4: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
2: सिर्फ मुझे बताना है, ये सबको थोड़ी ना, दुनिया में अल्लाह थोड़ी ना
4: आता है। आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते।
7: विके, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
2: किसने दिया मेरा नंबर?
7: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
2: अरे मैं खुकड़ू को।
8: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
9: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
10: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
11: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
12: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
11: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
13: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं, सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
14: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
15: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
14: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
15: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
14: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
16: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
17: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
18: तेरा क्या होगा कालिया?
19: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
18: अब मिर्ची खा।
17: Radio Mirchi, it's hot.

दोस्तों, हर शहर का ना अपना एक मौसम होता है और हर मौसम के साथ एक खास याद जुड़ी होती है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, मौसम की बातें हो रही है तो यार, किसी को मौसम के नाम से ना मुंबई की बारिश याद आती है, भीगी सड़कें, कटिंग चाय और वो हल्की सी रश वाली फीलिंग। तो किसी को दिल्ली की सर्दी याद आती है, फॉग, स्वेटर्स और धूप सेकने वाली मॉर्निंग्स। और किसी को अपने होम टाउन की शाम, जहाँ हवा धीमी चलती थी और वक्त भी। तो तब याद आता है ये गाना, जमाना लागे। जब वो लाइन आती है ना कि तुम्हारे शहर का मौसम, तो लगता है कि किसी एक जगह का नहीं, एक एहसास का जिक्र हो रहा है। क्योंकि सच तो यही है दोस्तों कि शहर बदल जाते हैं पर उनके मौसम दिल में रह जाते हैं। तो आप भी बताओ कि आज के मौसम के हिसाब से आपको किस शहर की याद आ रही है। टेल मी ऑन इंस्टाट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि जिस भी शहर की याद आ रही हो, ये गाना आपको शहर तक जरूर लेके जाएगा। सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Your voice, your ideas, your future. Sujit Singh is running for Congress in New Jersey 12 to bring your voice, your ideas and your concerns to Washington and turn them into real legislative action for our district. It is your opportunity to shape the priorities that matter to our families and communities. Visit singforcongress.org and share your priorities and wishes today. Remember, your voice, your future. Sujit Singh for Congress. Paid for by Sujit Singh for Congress.
3: जय गुरुदेव गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, शांति कुंज, हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
6: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
7: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
8: Tera kya hoga, Kalia?
9: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
8: Ab, mirchi kha.
10: Radio Mirchi, it's hot.

0: It's 7:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels, diamond jewelry ki first choice. RK Jewels, best quality, best price.
1: Sham Sharda, let's do not donkey, have a funky time.
2: दोस्तों बॉलीवुड का लैंडस्केप ना धीरे धीरे चेंज हो रहा है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और पहले ना एक फॉर्मूला होता था, बिग स्टार, बिग सॉन्ग्स, बिग रिलीज। आज ना इंडस्ट्री थोड़ा ज्यादा एक्सपेरिमेंटल हो चुकी है क्योंकि एक्टर्स भी डिफरेंट कैरेक्टर्स ट्राई कर रहे हैं और डायरेक्टर्स भी यूनिक स्टोरीज एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब ऑडियंस भी स्मार्ट हो गई है तो सिर्फ ग्लैमर नहीं, कॉन्टेंट भी डिमांड करती है। और शायद इसी वजह से कुछ फिल्म थिएटर में धमाका करती है और कुछ OTT पे कल्ट फॉलोइंग बना लेती है। यार ये इंटरेस्टिंग फेज है जहां बॉलीवुड एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, मल्टीपल लेन्स में ग्रो हो रहा है। और सच कहूं तो जब इंडस्ट्री एक्सपेरिमेंट करती है ना तभी आइकॉनिक सिनेमा पैदा होता है। तो आप भी बताना आप कौन सी टाइप की फिल्म ज्यादा पसंद करते हो। टेल मी ऑन Insta@RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
4: शशि वो मैनहट्टन है।
3: Manhattan.
5: Man as me. Hat. Topi. Or mom, what's tan in Hindi?
4: Tan matlab wo dhoop ki chhap.

गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। चलिए 8 बजने वाले हैं, इसका मतलब मेरा वीकेंड शुरू होने वाला है और इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय टाटा सायोनारा टू यू गाइस। लेकिन आप कहीं ना जाइए क्योंकि आपकी पार्टी यहीं पर शुरू हो सकती है। जी हाँ, क्लब मिर्ची शो आ रहा है, तो बस डीजे की जरूरत ही नहीं है, गाने यहीं पर बजाइए और अपनी पार्टी शुरू कीजिए राइट हियर ऑन मिर्ची। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, दिस इज मिर्ची सिद्धि साइनिंग ऑफ।